ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। प्रातःकाल के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी कोटा बूंदी है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

गौतम बुद्ध ने कहा है, हम अपने विचारों से जन्म लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो प्रसन्नता हमारी परछाई की तरह होती है, जो कभी हमसे दूर नहीं जाती।

हमें अपने प्रभु के प्रेम और कृपा पर पूरा विश्वास है। हमारा ईश्वर ही हमें दुख और संतापों से बाहर निकालेगा, वही हमारे बिगड़े हुए काम बनाएगा।

प्रभु की दीवानगी ऐसी कि जीवन का सारा सुख वैभव तुच्छ लगने लगता है। बस उस परम पिता का सानिध्य मिल जाए, भले ही वह हमें अपने दास के रूप में ही क्यों न स्वीकार करते हो।

हमारा हृदय ही प्रभु का मंदिर है। सत्कर्म और पवित्र भावना से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के दर्शन से जो परम सुख मिलता है उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है।

आज की अर्चना में आपने पंडित अजय चक्रवर्ती, लता मंगेशकर, शेखर सेन, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और आशा भोसले के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

श्रीराम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा

मधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी सुन रहे थे। आज मुख्य स्वर महेंद्र कपूर और मिताली सिंह के थे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है हृदय परिवर्तन।
1: बुद्ध घूम रहे थे भारत में, भ्रमण करते हुए मगध में पहुंचे तो एक नगरी के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। लोग उनके दर्शनों को आए। बुद्ध ने पूछा, क्या हाल है? सबने कहा, बहुत दुखी हैं हम। किसी ने कहा, मेरा लड़का मारा गया। किसी ने कहा, पति मारा गया। किसी ने कहा, भाई मारा गया। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, क्या हो गया है तुम सबको? क्या कोई युद्ध यहाँ पर हुआ? क्या राजा ने अत्याचार आरंभ कर दिया? लोगों ने कहा, नहीं महाराज, राजा अच्छे हैं, युद्ध भी नहीं हुआ। परंतु यहाँ एक डाकू रहता है, अंगुलीमाल। वो प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को मारकर उनकी अंगुली काट लेता है। जिस देवी की वह पूजा करता है, वह उसे 1000

0: चलते गए चलते गए, पर्याप्त आगे जाकर एक स्त्री मिली। बुद्ध ने पूछा, माँ क्या तुम जानती हो कि अंगुलीमाल डाकू इस वन में कहाँ रहता है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, जानती हूँ पुत्र, परंतु आगे मत जा, वापस चला जा यहाँ से। अंगुलीमाल मनुष्य नहीं राक्षस है, वो तुम्हारा वध किए बिना मानेगा नहीं। बुद्ध हंसते हुए बोले, ऐसी क्या बात है माँ, वो मेरी हत्या क्यों करेगा? बूढ़ी स्त्री ने कहा, तू जानता नहीं है बेटा, 1,000 अंगुलियों को वह एकत्रित करना चाहता है। आज अंतिम रात्रि है, आज उसे देवी की पूजा करनी है, उसे माला पहनानी है, और माला में 1 अंगुली अभी कम है। आज प्रातःकाल से ही किसी व्यक्ति को वह खोजता फिरता है, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने पूछा, यदि रात्रि तक कोई व्यक्ति न मिला तो क्या करेगा तू? वो बोला कि सायंकाल तक यदि कोई व्यक्ति न मिला तो तुझी को मार डालूंगा, तेरी अंगुली काटकर माला में पिरो दूंगा। मैं ऐसी डरी कि सायंकाल होने से पूर्व ही घर छोड़कर भाग उठी। अपनी माँ को नहीं छोड़ता वो तो तुझे कैसे छोड़ेगा, वापस चला जाए यहाँ से। वह पहले पागल था, आज पूर्ण पागल हो गया है। बुद्ध बोले, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं उससे मिलूंगा अवश्य। तुम बताओ वह रहता कहाँ है? बूढ़ी स्त्री ने कहा, वृक्षों के काले झुरमुट के उस पार उस मकान में, उसमें मिलेगा वह, परंतु मैं अब भी कहती हूँ वहां न जा। बुद्ध हंसते हुए आगे बढ़े, झुरमुट के उस पार चलते चले गए। सामने मकान दृष्टिगोचर हुआ, उसके समीप जाकर बोले, कोई है? अंदर से आवाज आई। थोड़ी देर में अंगुलीमाल बाहर आया, हाथ में तीक्ष्ण तलवार लिए द्वार के बाहर आकर बोला, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, क्या तुम ही अंगुलीमाल हो? डाकू ने चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम्हारी मृत तुम्हें यहाँ ले आई है, मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। बुद्ध हंसते हुए बोले, मैं गर्दन ही कटवाने आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी पूजा पूरी हो जाए। आगे बढ़ो, काटो ये गर्दन। और उन्होंने गर्दन झुका दी। अंगुलीमाल प्रसन्नता से चिल्लाकर आगे बढ़ा तलवार उठाकर, परंतु ये क्या, तलवार वाला हाथ जहां का तहां रुक गया। कांपते हुए उसने कहा, यह क्या हो गया मुझको, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं हूं गौतम। डाकू ने तलवार फेंक दी, आश्चर्य से बोला, आप ही क्या गौतम बुद्ध हो? आप ही क्या मरने के लिए यहां आए हो? बुद्ध ने कहा, हाँ मैं गौतम हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ। अंगुलीमाल कांपती हुई आंसू भरी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो गौतम, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। गौतम आगे बढ़े, उसके माथे को छू कर बोले, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे पाप नष्ट कर दिए, मैंने तुम्हारे मन को बदल दिया। यही अंगुलीमाल बाद में भिक्षु बना, लंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार उसने किया।
1: हृदय परिवर्तन। अभी आपने चिंतन में इस विषय पर विचार सुने। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102.103 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विवरण लीजिए। हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम 8:15 पर इस सभा में होगा। आज का विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं और डॉक्टर की सलाह। हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया। घर आंगन कार्यक्रम में आज एक भेंट वार्ता सुनिएगा, रजोनिवृत्ति की समस्याएं और योग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रंगोली रानी चौहान।

सायंकालीन प्रसारण में अपराह्न 4 बजे सुनिएगा संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें आज नॉलेज कॉर्नर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के शहीदी दिवस पर चर्चा करेंगे और युवा दिल से स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें सुनिएगा शाम 5:30 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे शाम 7 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम लहसुन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवेश सिंह चौहान।

7:30 बजे आज फिल्म संगीत कार्यक्रम में कुछ युगल गीत सुनवाए जाएंगे। नमस्कार कोटा कार्यक्रम होगा 7 बजे। इसमें आज विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और फिल्मी गीत सुनवाएंगे, साथ ही कुछ स्थानीय सूचनाएं होंगी। नौ बजकर दस

0: रात 9 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा बातों बातों में, और रात्रि 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के क्रम में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में कड़ी संख्या 18 का प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी है। अब संस्कृत में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवाद

0: नमस्कार कोटा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार से, खुद पर विश्वास रखो और तुम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगे। मुस्कान दूसरों को दिया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार है। हर दिन दयालु और मददगार बनने का एक नया अवसर है। छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: जिया चले जा चले, जिया चले।

श्रोताओं, योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। योग हमारी मांसपेशियों की ताकत और शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है, तनाव दूर करके मानसिक शांति प्रदान करता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है तथा हृदय और स्वास्थ्य व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। विभिन्न योगासन शरीर के जोड़ों को लचीला बनाते हैं और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं। प्राणायाम और योग मुद्राएं फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती हैं और रक्त संचार को बेहतर करके हृदय रोगों के खतरे को कम करती हैं। योग मेटाबॉलिज्म को सुधारने में किस तरह मदद करता है? इससे संतुलित वजन बनाए रखने में सहायता मिलती है। नियमित अभ्यास से शरीर में थकान कम होती है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। आइए अब योग से किस तरह मानसिक फायदे होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। योग कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है और मस्तिष्क को शांत रखता है। ध्यान और श्वास क्रियाएं मानसिक स्पष्टता और फोकस को बेहतर बनाती हैं। अनिद्रा की समस्या योग से दूर होती है और गहरी और आरामदायक नींद आती है। योग आंतरिक अंगों और ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पीठ दर्द, गर्दन दर्द और जोड़ों के पुराने दर्द में योग बहुत राहत देता है। ये शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित करता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है।

आइए अब कुछ स्थानीय सूचनाएं आपको सुना दें। खाटू श्याम जी के संबंध में सूचना सुन लीजिए। जो भक्त अगले कुछ दिनों में दर्शन करने जा रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्याम बाबा की विशेष पूजा

और कार्यक्रम के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किया है। 19 जून शुक्रवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके चलते आज 18 जून की रात्रि 10 बजे से 19 जून की शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दर्शन बंद रहेंगे।

कोटा शहर में आज जिन स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी वो समय इस तरह से है। 3:30 बजे से 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर और मोटर मार्केट में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रिद्धि सिद्धि एनक्लेव, वीआईपी होम रेजिडेंसी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जैन गली, मेडिकल मार्केट, नमक वाली गली, लाडपुरा मेन रोड, वर्धमान सिटी, जगदीश होटल के आसपास, साकेत आवास और सृष्टि विस्तार योजना में बिजली बंद रहेगी। 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रणजीत कॉलोनी सोगरिया क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। शाम 4 बजे से 6 बजे तक चाणक्यपुरी योजना, टैगोर नगर, रानी लक्ष्मीबाई योजना में बिजली बंद रहेगी।

बिजली से जुड़ी हुई एक और सूचना सुनिए। शहर के उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के मौके पर निस्तारण करने के लिए कोटरा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी KEDL की ओर से आज एक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। KEDL के प्रवक्ता ने बताया कि कोटड़ी गुमानपुरा रोड स्थित कंपनी भवन के प्रथम तल पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इसमें कंपनी के CEO सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे।

कुछ और सूचनाएं सुनिए श्रोताओं, कुछ करियर और शिक्षा से संबंधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPCA के तत्वाधान में प्राध्यापक विशेष शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 121 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जारी हैं। RPSC के सचिव ने बताया है कि विशेष शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 121 पदों पर भर्ती होगी। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 30 जून को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और परीक्षा की तिथि की सूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीयन जल्द प्रारंभ करेगा। ये विद्यार्थी वर्ष 2028 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। पंजीकृत विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का 9वीं और 11वीं में पंजीयन किया जाता है। इसके लिए नाम, माता पिता, जन्मतिथि, स्कूल, विषय और अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं। वर्ष 2028 में 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस बार 9वीं और 11वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के तहत आज ऑक्सीजोन पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसके लिए रिहर्सल आयोजित की जा रही है और सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और योग प्रशिक्षकों और स्वयंसेवक इसमें भाग ले रहे हैं। ये योग सवेरे 6 बजे से आरंभ हो चुका है। इसमें पहुंचने के लिए गेट नंबर 3 से निशुल्क प्रवेश देय है। इसी तरह 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय

आयोजन चंबल रिवर फ्रंट स्थित शौर्य घाट पर आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, योग साधक और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी योगाभ्यास करेंगे। 21 जून को रिवर फ्रंट पर मुख्य आयोजन के साथ साथ शहर के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोदावरी धाम, शिवपुरी धाम, किशोर सागर तालाब, गणेश उद्यान, ऑक्सीजन पार्क, सेवन बॉन्डर पार्क, शिवाजी पार्क, चंबल गार्डन, सीबी गार्डन, भितरिया कुंड और जग मंदिर सहित अन्य चयनित स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को योग से जोड़ा जाएगा।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम होगा। इसका आज का विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं और डॉक्टर की सलाह। हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया।

आप चाहें तो प्रसारण के दौरान आज के विषय पर उनसे फोन पर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2941142। एसटीडी कोड इससे पहले मिलाएं 0744। समय याद रखिएगा 8:15 से 9 तक ये कार्यक्रम होगा। इसी तरह चौपाल कार्यक्रम में आज लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा। विषय है लहसुन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवेश सिंह चौहान। आप इनसे भी हमारे बताए गए नंबर पर कॉल करके और आज के विषय पर बातचीत कर सकते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही देश दुनिया में अब आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। थोड़ी ही देर में होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम है नसीब अपना अपना। गीत लिखा है SH बिहारी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में पेंटर बाबू फिल्म का एक गीत, पतील शिफाई की रचना है और उत्तम सिंह जगदीश खन्ना का संगीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में दो रास्ते फिल्म का एक दो गाना। आनंद बख्शी की गीत रचना है और संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और धुन बनाई आनंद मिरिंद ने। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गाना था फिल्म बेताब से। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई आरडी बर्मन ने। युगल गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सवेरे के 8 बज रहे हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
8: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
4: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के

0: सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
1: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।

0: चार दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
2: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
3: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से एफ एम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप हमारा प्रसारण प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर देश दुनिया में हर जगह सुन सकते हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 88 शक्तिनगर दशहरा मैदान कोटा।
1: कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा। कोटा आई हॉस्पिटल जहां बिना दर्द बिना टांके और बिना पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और मुड़ने वाले लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कोटा आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पंजाबी द्वारा रेटिना से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और विश्व की सर्वोत्तम एलकॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन द्वारा सर्जरी की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल में हाड़ौती की प्रथम और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एलकॉन वेव लाइट EX500 लेसिक लेजर मशीन द्वारा चश्मा हटाने की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल राजस्थान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नेत्र चिकित्सा सुविधा के बिल पुनर्भरण हेतु अनुमोदित है। कोटा आई हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे आंखों की संपूर्ण जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। 1987 से आपकी सेवा में समर्पित अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त संस्थान कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा।
0: सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं राम नारायण। आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं और डॉक्टर की सलाह। इसमें आज की हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया जी। डॉक्टर प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: थैंक यू।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप फोन करके और आज के विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपको हम बता देते हैं। इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए नंबर है 2942-994-1142। इससे पहले कोटा शहर का STD कोड आपको मिलाना होगा 0744 यानी 0744। तो आइए बातचीत आरंभ करते हैं और आज का जो विषय है गर्मियों में आंखों की समस्याएं और बचाव। तो क्या डॉक्टर जी बताइए कि क्या गर्मियों में इतनी परेशानियां आंखों में होने लगती हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े?
2: जी। गर्मियों के मौसम में स्पेशली जो परेशानियां आती हैं वो ये हैं कि आंखों में सूखापन बढ़ जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो स्टेट है बॉडी में भी ज्यादा होती है। बाहर के मौसम में जो गर्मी है उसका असर आता है शरीर पे।
0: जी।
2: तो आंखों में सूखापन होना, एलर्जी होना, खुजली होना, पानी आना, चुभन होना, ये कुछ आम समस्याएं हैं जो गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोगों को होती है। उनके लिए चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता हमें रहती है।
0: अच्छा, क्या उम्र से कोई संबंध है आंखों की परेशानियां का गर्मियों में?
2: जी। यूजुअली एज के साथ वैसे भी ड्राइनेस ज्यादा ही होती है, तो समर्स के साथ में वो ड्राइनेस और बढ़ जाती है थोड़ा। तो प्लस आजकल जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों का, बड़ों का, सभी का ही बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से समर्स में थोड़ा ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा
0: आती है। अच्छा, ये जो ड्राइनेस है इसके लक्षण क्या हैं? क्या आंखों में क्या महसूस करने लगेगा व्यक्ति कि उसको लगता है कि मेरे आंखें सामान्य नहीं है, कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है? क्या क्या लक्षण होते हैं?
2: सूखेपन के, ड्राइनेस के मेनली लक्षण होते हैं कि आंखों में चुभन महसूस होती है।
0: अच्छा।
2: लालपन हो जाता है, पानी आता है। सूखापन होने के बावजूद आंखों में पानी आना, ये इसी का लक्षण है। कभी कभी आंखों में खुजली ज्यादा होना या आंखों की पलकों का सुबह थोड़ा बहुत चिपका हुआ होना, ये सब सूखेपन के ही
0: ये लक्षण है। सूखेपन के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई बार हम सुबह सोकर उठते हैं तो लगता है आंखें चिपक रही हैं और कुछ सूखा सूखा पदार्थ पलकों पर जमा

0: हुआ है तो ये इसे के सूखेपन के लक्षण है
1: जी।
0: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या लक्षण होते हैं जो गर्मियों में होने वाली परेशानियां दर्शाती हैं?
1: सर, गर्मियों में मेनली यही ड्राइनेस के ही लक्षण रहते हैं
0: जी।
1: तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि आंखों में खुजली बहुत हो रही है, बार बार आंखें रगड़नी पड़ रही हैं, चुभन, ऐसा लग रहा है कि आंख में रेत या कंकर जैसा कुछ
0: अच्छा,
1: चला गया है या आंसू आना ज्यादा हो रहा है, पानी बार बार निकल रहा है, तो यही सूखेपन के लक्षण है।
0: अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर और बनती है बातचीत के लिए कि एक तो गर्मियों में वैसे ही आंखों में ड्राइनेस है और आप लगातार स्क्रीन पर हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादा दोनों चीजें मिलकर और परेशानियां बढ़ाती होंगी?
1: जी हाँ, इससे परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। कारण यह है कि जब हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो हमारी जो आंखों की झपकने की गति है, ब्लिंक रेट जिसे हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है। उससे जो नॉर्मल टीयर फिल्म है, आंसू की जो नॉर्मल परत है, वो जल्दी टूटती है और रिप्लेनिश नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लिंक रेट कम है तो रिप्लेनिश नहीं हो पाती, तो सूखेपन के लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम अपने आप में एक रीजन है, गर्मियां बढ़ेंगी तो वो स्क्रीन टाइम भी साथ में है, तो सूखेपन के लक्षण ज्यादा रहेंगे।
0: अच्छा, तो क्या ये स्क्रीन का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि आदमी को जो स्वाभाविक पलकों का झपकना है, जो समय है उसका, कि इतनी देर में पलकें स्वाभाविक रूप से अपने आप झपकती हैं, वो उसकी गति या उसका समय डिस्टर्ब हो जाता है?
1: ये मनोवैज्ञानिक नहीं, हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो अपने आप ही ब्लिंक रेट हमारी कम होती है।
0: होती है
1: जी।
0: अच्छा, तो स्क्रीन पर पता ही नहीं लगता कि हमारी ब्लिंक रेट कम हो रही है।
1: ब्लिंक रेट कम होगी ही, हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, तो ब्लिंक रेट कम हो जाएगी तो हमारा जो टीयर फिल्म, नॉर्मली जब हम पलक झपकते हैं तो नई आंसू की परत बन जाती है, वो नहीं बन पाती।
0: अच्छा,
1: तो इसीलिए वो देखते देखते धुंधलापन दिखने लग जाता है, वो सब इसी वजह से होता है।
0: तो ये आंखों में जो सामान्य रूप से पलक झपकना और इसकी वजह से आंख में नमी बनी रहना, ये प्रक्रिया क्या है, थोड़ा समझाइए।
1: नॉर्मली हमारी जो आंखों में आंसू की जो लेयर होती है वो 10 से 15 सेकंड तक बनी रहती है, जब हम पलक झपकते हैं तो वो नई लेयर वापस से बन जाती है।
0: अच्छा,
1: लेकिन अगर हम स्क्रीन पर यूज कर रहे हैं और हमारी पलक झपकने की जो गति है, ब्लिंक रेट कम हो गई है, तो नई लेयर नहीं बन पाएगी और आंसू की लेयर जो टूट जाएगी, जगह जगह पर ड्राई स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे।
0: अच्छा,
1: तो जो टूट डिस्टर्ब जो टीयर फिल्म है जो नॉर्मल नहीं है, वो जल्दी ब्रेक होगी, आंसू बाहर गिरेगा, हमें आंखों में चुभन महसूस होगी, ब्लर्ड फील होगा, देखने में धुंधलापन लगेगा।
0: तो चलिए, अब श्रोता हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक श्रोता फोन पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनका फोन लेते हैं, हम सुनते हैं क्या पूछते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
2: अरे
0: हेलो, हाँ
2: हेलो डॉक्टर साहब, वीना जैन बोल रही हूँ तलमंडी से।
1: जी जी बोलिए मैम।
2: डॉक्टर साहब, मेरे आंखों में पानी खूब आता है, चश्मे के नंबर भी बहुत ज्यादा है, 12 नंबर है डॉक्टर, इस वजह से पानी आता है क्या डॉक्टर साहब आंखों में?
1: मैम, चश्मे का नंबर होना और आंखों से पानी आना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
2: अच्छा,
1: आपका चश्मे का नंबर, आप जैसा बता रहे हैं कि आप 12 नंबर का चश्मा लगाते हैं, तो वो एक अलग कंसर्न है, नंबर बहुत ज्यादा है, आपको वैसे भी आई चेकअप मैम रेगुलर करवाना चाहिए, लेकिन अगर
2: धुंधला धुंधला भी दिखता है मेरे को।
1: जी, तो आप एक बार, आप जो भी आई हॉस्पिटल है, आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ आप चेक करवाइए मैम, क्योंकि 12 नंबर चश्मे का होना एक अपने आप में आँख की एक बीमारी है जिसे हम पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, जिसमें आँख का चेकअप होना जरूरी है। बाकी आँख में पानी आना उसके अलग कारण हो सकते हैं
0: जी,
1: जिसके लिए आपको आई हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाने की जरूरत है, और ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, साथ में डायबिटीज भी है मेरे को।
1: जी, डायबिटीज है और 12 नंबर है, आंखों से पानी आ रहा है, तो मेरी सलाह है कि आपको हॉस्पिटल जाकर एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीना जी, आपने हमें फोन किया इसके लिए। तो अब हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि गर्मी में जो जलन और खुजली है वो किन्हीं और कारणों से भी होती है या ये केवल ड्राइनेस की वजह से ही होती होगी?
1: जी
0: जी,
1: गर्मियों में यूजुअली जलन और खुजली का कारण, जलन ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन खुजली का कारण जनरली एलर्जी होती है।
0: एलर्जी है
1: जी। हमारे एनवायरनमेंट में जो हवा, धूल, मिट्टी है, धूप है, तो कुछ लोग उसके लिए एलर्जिक होते हैं, तो इस स्थिति में आंखों में खुजली आना, पानी आना, चुभन आना और बढ़ जाता है। तो ये समस्या गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, इसीलिए जनरली जब सीजन चेंज होता है तो जिनको एलर्जी है उनकी समस्याएं और ज्यादा हो जाती हैं।
0: एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं फोन पर, तो उनसे भी हम बात करेंगे।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार, स्वागत आपका।
1: हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूछें सवाल।
1: हम ये पूछना चाहते हैं भैया, जैसे ज्यादातर गांव देहात में सब चूल्हे में खाना बनाते हैं और ये भीषण गर्मी में, तो उनको क्या सावधानी रखना चाहिए?
0: जी, तो अब डॉक्टर साहब बता रही हैं, आप सुनिए। जी
2: जी, योगेश जी, अगर चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो धुएं से थोड़ी आंखों में परेशानी होगी ही होगी, तो अवॉइडेबल चीज़ तो इसमें यही हम कर सकते हैं, वो यही है कि जितना हो सके बचाव करें, एक्सपोजर कम रहे धुएं से, धूप से। घर से जब बाहर निकलें तो ढककर निकलें सर को, धूप में तेज धूप में बाहर नहीं निकले, बाकी समय पर बचाव करें। अदरवाइज आप चूल्हे पर खाने की जगह गैस चूल्हे का प्रयोग करें, क्योंकि धुएं से परेशानी होगी ही होगी।
0: और कुछ पूछना चाहते हैं आज के विषय पर?
1: जी नहीं भैया, धन्यवाद।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए। जी तो अच्छा, एक धूप बड़ी तेज होती है, और जैसे ही कई बार हम धूप में जाते हैं तो आँखों में एकदम से चिलचिलाहट और सरदर्द, और कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो धूप में जिन लोगों को परेशानी है या यूं कहें एलर्जी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, सभी लोगों के लिए, यूजुअली ये मतलब सभी के लिए है, या फिर जिनको धूप से ज्यादा सेंसिटिविटी है उन्हीं के लिए
0: जी।
2: माने, या सबके लिए, सभी को गर्मियों में धूप में बाहर निकलते समय सनग्लासेस का यूज करना चाहिए जिसमें यूवी
0: अच्छा
2: फिल्टर हो।
0: अच्छा
2: ये एक नॉर्मल प्रिवेंटिव मेजर है अपनी आंख की बाहरी सतह की सुरक्षा के लिए, जो
0: अच्छा
2: कि सभी के लिए जरूरी है। तो सभी को सनग्लासेस यूज करने चाहिए, कैप यूज करनी चाहिए, और अगर जरूरी नहीं हो तो तेज धूप में बाहर ना निकले।
0: अवॉइड करना
2: जी,
0: चाहिए।
2: अवॉइड करना चाहिए।
0: वरना मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, अगर ज्यादा परेशानी है लोगों को, और
2: जी
0: वो अगर आपने कहा कि वो चश्मा नहीं लगाते
2: जी
0: हैं, धूप का चश्मा नहीं लगाते हैं, तो क्या दिक्कत आ सकती है आंखों में?
2: जी आंखों की जो हमारी बाहर की सतह होती है, जिसे हम कंजक्टाइवा और कॉर्निया बोलते हैं, ये जो सतह है ये अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, धूप के लिए सेंसिटिव होती है। तो लंबे समय तक धूप के एक्सपोजर से ये जो सतह है ये डैमेज होने लग जाती है, और इसमें परमानेंटली चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कई लोगों में नाखूना बन जाता है, सूखेपन का लंबे समय तक रहने से जो कॉर्निया है, आंख का हीरा है, उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। तो लंबे समय तक सूखापन रहने से नजर भी कम हो जाती है। तो इसलिए सावधानी के तौर पर सभी लोगों को जब भी बाहर निकलें तो यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस यूज करने चाहिए।
0: अच्छा, अभी कई बार लगातार आंधियां बनी हुई हैं, उसमें कचरा और धूल ये सारी उड़ के लोगों की आंखों में जाते हैं, और गांव में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, वहां काफी धूल उड़ती है, तो ये जो उड़ने वाली धूल है, ये कचरा है, ये क्या नुकसानदायक हो सकता है आंखों के लिए?
2: जी, आंख में अगर धूल मिट्टी कण कुछ चला गया है,
0: जी
2: आपको महसूस हो रहा है कि आंख में चुभन हो रही है, तो उसको लापरवाही से नहीं काम में लेना है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने घर पे साफ ठंडे पानी से आंखों को बार बार धोएं। अगर आपको लगता है कि जो चुभन है वो खत्म हो गई है, परेशानी नहीं हो रही है, आंख में लालपन नहीं बढ़ा है, तो ठीक है, आप एक दो दिन इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे चुभन बनी हुई है, लालपन बढ़ गया है, आंख में दर्द हो रहा है या रोशनी कम हो रही है, तो तुरंत बिना देर किए नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
1: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
0: हाँ पूछें सवाल आप। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार करके कहाँ चले गए, किधर चले गए? हम तो आपकी आवाज आगे सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
1: Hello?
0: हाँ हाँ हाँ बोलिए।
1: अरे हमारे बच्चे 7-8 साल के जी आके लाल रहे थे हमेशा, उनको गिजड़ा रहे थे, पानी आ जाए क्या? मैं
0: अच्छा
1: कार्यक्रम में
0: अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है हमारी आपको ठीक से?
1: आ रही है।
0: हाँ।
2: क्या आपका बच्चा बार बार आंखों को मसलता भी है बहुत ज्यादा?
1: हाँ मैडम, कुछ 40 साल हो गए।
2: हाँ, तो जनरली जो 7-8 साल के बच्चे हैं उनमें क्या होता है, एलर्जी की जो समस्या है वो ज्यादा रहती है। इस एज में एलर्जी के लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर बच्चे की आंखें हर बार गर्मियों में लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है आंखों में, बच्चा आंखों को बहुत ज्यादा मसल रहा है, मतलब उसको हवा धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो आपको उसको इलाज करवाना होगा, धूल मिट्टी से बचाना होगा।

0: बच्चे को जब भी घर से बाहर निकले बिना काले चश्मे के, बच्चा घर के बाहर नहीं निकले, तेज धूप में बच्चा बाहर नहीं जाए, और इलाज बच्चे का समय पर चालू होना जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा बार बार आंखों को मसलता है तो उससे बच्चे की आंखों में चश्मे का नंबर भी आ सकता है, उसकी रोशनी पर भी असर आ सकता है। तो आप उसको हॉस्पिटल, किसी भी आई हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज।
1: ज्यादा मोबाइल पर तो नहीं लगा रहता बच्चा? आजकल बच्चे लगातार मोबाइल पे हैं, छोटे बच्चे है ना?
2: नहीं सर, मोबाइल ही बना मार दूसरा वाला जो बना।
1: हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे बचे हुए हो इस परेशानी से, है ना? तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा ना, अपने बच्चे की आंखों का उसी तरह ध्यान रखें, और अगर जरूरत है, लंबे समय तक ये परेशानी बनी हुई है, तो किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है?
2: ठीक है,
1: अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और फोन किया आपने तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 88 शक्तिनगर, दशहरा मैदान, कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड आईवीएफ सेंटर, 12-13 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा। एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध यहां पर। आईवीएफ, इक्सी, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, आईयूआई, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी।
1: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में एक बार हम अपने सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज का विषय एक बार फिर से जो हमारे नए श्रोता अभी बीच में जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनके लिए बता देते हैं कि आज हमारा विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं और डॉक्टर की सलाह। हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया जी, तो एक बार फिर सभी श्रोताओं से मुखातिब होना चाहते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, हमारे श्रोताओं के अभी तक आपने 2-3 कॉल्स, फोन कॉल्स सुनी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस अनुभव है आपका?
0: यहाँ पर अच्छी बात है कि आकाशवाणी के माध्यम से लोग अपनी परेशानियों को शेयर कर रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब लोगों में अवेयरनेस है अपनी आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए।
1: अच्छा, एक तो हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ से फोन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सुखद बात है कि अब देश भर के श्रोता हमें सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में फोन करना चाहते हैं, आज के विषय पर बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको टेलीफोन नंबर बता देता हूँ जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं इस समय, 2941142, यानी 2941142 ये नंबर है। इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड आपको मिलाना है 0744। तो जैसे आपकी कॉल हमें प्राप्त होती है, मैं डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा आपकी कॉल, और फिर आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं और आपकी कॉल हमारे श्रोता भी सुन सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि इन दोनों ने काफी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाया है। आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह नुकसान हो सकता है मोबाइल से लगातार? मैंने कुछ बच्चों को देखा है, कुछ मजदूरों के बच्चों को देखा है कि वो जो अपना ये जो एंड्रॉइड फोन है वो छोटे बच्चों को दे देते हैं, वो खुद काम कर रहे हैं और बच्चे लगातार उनको चला रहे हैं। इवन मैंने 3 या 4 साल का बच्चा भी देखा जो लगातार आंख उसके मोबाइल को चला रहा है वो, और उसकी आंखें इतनी मतलब गंदी हो रही हैं, उसकी आंखें इतनी लाल हो रही हैं। तो इस तरह की जो आदत पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों में, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: जी, अभी आजकल सामान्यतः हमारे ओपीडी में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, सबके पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मैम बच्चे को समझाइए, मोबाइल ज्यादा देखता है। तो ये पेरेंट्स को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे बच्चों को हम मोबाइल का एक लिमिटेड टाइम के लिए ही एक्सपोजर दें, क्योंकि मोबाइल का ज्यादा एक्सपोजर इतनी कम उम्र से ही होने से एक तो बच्चे की आदत लग रही है, दूसरा जो आंखों में ड्राइनेस है, चश्मे का नंबर आना, ये समस्या सभी बच्चों में कॉमन होती जा रही है। ज्यादातर बच्चे जो भी आ रहे हैं, किसी भी समस्या से आ रहे हैं, सबकी आंखों में सूखापन है ही सही। रीजन ये है कि सभी का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, प्लस ऑनलाइन क्लासेस जो एक आजकल ट्रेंड में आ गई है, उस वजह से ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी 3 से 4 घंटे का स्क्रीन टाइम सबका हो ही रहा है। तो उसके अलावा बच्चे मोबाइल ना देखें, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसके अलावा अपने बच्चे को मोबाइल ना दें। मोबाइल की जगह बच्चों को अगर घर बाहर धूप है तो इंडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें, और अगर बाहर मौसम अच्छा है तो कोशिश करें कि हर बच्चा 1 से 2 घंटे कम से कम बाहर खेले। वो बच्चे की जनरल हेल्थ के लिए

0: ये आई हेल्थ के लिए सभी चीजों के लिए जरूरी है।
1: एक और कॉलर जुड़ना चाहते हैं, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है तो उनसे बात करते हैं, क्या फोन पर क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो, राम नारायण जी नमस्कार।
1: हाँ राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जो
2: मैं सत्यनारायण से नहीं बोल रहा हूँ, बूंदी।
1: अच्छा, हाँ सत्यनारायण जी, कैसे हो आप?
2: मैं यो बोल रहा हूँ, जिसे मेरी उम्र 70 साल है।
1: अच्छा जी,
2: तो जिसे अपने कैदी का अचार खा लेते ना खट्टा, थोड़ी सुगर खाऊं या ना खाऊं?
1: हाँ दोबारा सवाल पूछो आप, तो फोन बात कट गई, कटी कटी हो गई बीच में।
2: मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरी उम्र 70 साल है,
1: हाँ जी,
2: और जैसे केरी का चार खाते हैं ना अपन, तो वो आंखों में थोड़ी नीचे सूजन आ जाती है।
1: ओह अच्छा।
2: और हल्की हल्की सी एलर्जी भी हो जाती है, तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ भाई, अचार खाएं या ना खाएं?
1: डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं
0: जी। सत्यनारायण जी, यूजुअली खाने का सीधा कोई संबंध नहीं होता है। अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, आपके शरीर में और परेशानियां हैं, एलर्जी है आपको किसी फूड से, तो उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। बाकी कैरी का अचार डायरेक्टली आंखों पे कोई असर नहीं डालता, ये एक भ्रांति है कि कैरी खाने से या नींबू खाने से आंख में कुछ अलग से होगा। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी ज्यादा रहता है और आप तेल वाली या ज्यादा मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, तो उसका असर पूरी शरीर पर ही आएगा। तो पलकों पे सूजन का कारण ये हो सकता है कि आपका बीपी बढ़े।
1: अच्छा,
0: आप ज्यादा तेल मसाले की चीजें खा रहे हैं, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर खाने से एलर्जी हो, तो उसकी वजह से पलक की सूजन हो सकती है। बाकी वैसे आंखों पर इसका कोई असर नहीं है।
2: और ये जब मौसम बदलता है ना सर, ये
0: जी
2: डॉक्टर साहब, मौसम जब बदलता है ना, जैसे सर्दी से अक्टूबर में गर्मी आती है, सर्दी तब भी ऐसा होता है? चेंज होता तब भी होता है
0: जी, मौसम बदलने पे जरूर ये होता है। जिनको एलर्जी होती है उनको गर्मियों का मौसम आने पे, या जब भी हवा वाला मौसम आएगा, आंधी अंधड़ वाला, तब उनको एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। पलकों में सूजन आना, खुजली आना, पानी आना बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मौसम बदले, गर्मियों में बिना चश्मे के बाहर नहीं निकलें, जरूरत ना हो तो ना निकलें, ठंडा सेक करें आंखों का, ठीक है? और अगर आपको ज्यादा परेशानी लगे तो आप नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।
2: धन्यवाद
1: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यनारायण जी, आपने काफी समय बाद हमें फोन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। तो श्रोताओं अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बीमारी अक्सर हमारे साल में एक दो बार हो जाती है, आई फ्लू, है ना? तो हालांकि ये बरसात के बाद में होती है जनरली हमारे यहाँ, क्या ये बरसात के इस मौसम के अलावा भी बीच में भी हो जाती
0: जी? आई फ्लू यूजुअली बारिश के मौसम में ज्यादा होता है, लेकिन ये पूरे साल भर ही अच्छा। ये समस्या बनी रहती है आई फ्लू, क्योंकि इसका कोई मौसम से पर्टिकुलर संबंध नहीं है, इसका हाइजीन से संबंध है। अगर हमारा हाथ बिना धुले, अगर हाथ हम आंखों पे लगा रहे हैं, या गर्मियों में भी आई फ्लू इसलिए बढ़ता है कि जिनको एलर्जी है वो आंखों को मसल रहे हैं, और अगर उन्होंने हाथ नहीं धोया है तो उस वजह से आई फ्लू हो जाता है। तो मेनली हैंड हाइजीन जो सबसे जरूरी है वो ये है, कोई भी गंदा हाथ, कपड़ा, रुमाल, तौलिया अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक प्रमुख कारण है।
1: अच्छा,
0: आई फ्लू के लिए
1: मतलब एक गंदगी उसको पैदा करती है आई फ्लू। अच्छा, उसके बाद में फिर ये बहुत ज्यादा संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, है ना? तो इससे बचने के लिए, और ये ज्यादा लोगों में नहीं फैले, मास में नहीं जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें?
0: इससे बचाव के लिए सर यही है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या बाहर से घर आ रहे हैं, मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारी आंखों पर हम हाथ ना लगाएं। अगर जैसे घर में बच्चे भी हैं, उनकी आदत है आंखों को रगड़ने की, तो बच्चा आंख क्यों रगड़ रहा है? उसको प्रॉब्लम है कुछ, तभी वो रगड़ रहा है, तो वो उसको डॉक्टर को दिखाना है। बच्चों को आदत डालनी है कि हाथ हमेशा बार बार साबुन से धोएं, आंखों पर हाथ नहीं लगाएं। एक व्यक्ति को अगर घर में इन्फेक्शन हुआ है, आई फ्लू हुआ है, तो उसका रुमाल, तौलिया, बिस्तर हम अलग रखें। सब लोग कॉमन में अपनी ये चीजें काम में ना लें, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना पहुंचे।
1: तो एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो,
3: हाँ नमस्कार सर, वंदे मातरम।
1: हाँ नमस्ते, नमस्ते, वंदे मातरम।
3: डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया से पूछना है कि ग्लूकोमा किस उम्र में होता है, और क्या ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों में असर होता है क्या?
1: अच्छा, आपका जवाब देंगे, पर अपना नाम और अपनी जगह का नाम तो बताओ।
3: हाँ, राम नारायण जी बोल रहे हैं क्या सर?
1: हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं।
3: तो मेरा नाम है रामचंद मखीजा कासर भाई सर, छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब डॉक्टर प्रियंका जी से आपने पूछना चाहा है तो आपके सवाल का जवाब दे रही है, सुनो ध्यान से। जी
3: जी जी, जी, जी।
0: सर यूजुअली ग्लॉकोमा

0: माँ 40 वर्ष की उम्र के बाद होता है, लेकिन वो बच्चों में भी हो सकता है, है ना। ग्लॉकोमा के बहुत से कारण होते हैं। अगर परिवार में पहले से हिस्ट्री हो कि आपके माता पिता को या किसी दादा दादी को, नाना नानी को काला पानी की शिकायत रही हो, तो चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में या आगे आने वाली जनरेशन में भी ग्लॉकोमा होने की संभावना
1: रहेगी। अगर अनुवांशिक है तो ये परेशानी आ सकती है।
0: बिल्कुल, अनुवांशिक लोगों में आ सकती है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, तो भी आपकी जो ग्लॉकोमा होने के चांसेस हैं बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होंगे। ये ग्लॉकोमा के बहुत से अलग अलग वेरिएंट होते हैं। कई बार जैसे आंख में चोट लगी है उसके बाद भी ग्लॉकोमा हो जाता है। कुछ बच्चों में जन्मजात भी ग्लॉकोमा होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत से कारण हैं ग्लॉकोमा होने के।
1: कुछ और जानना चाह रहे हैं सर?
2: मोबाइल देखने से, जैसे हम लोग पहले बच्चे थे तो टीवी ज्यादा मत देखो, अंधेरे में मत बैठो, पढ़ना है तो उजाले में थोड़ा बल्ब लगा के पढ़ो, या सिनेमा जाते थे, तो इस टाइप में कोई आंखों में असर होता है कि आजकल मोबाइल के कारण?
1: जी
0: हाँ, मोबाइल देखने से ग्लॉकोमा नहीं होता है। मोबाइल देखने से आंखों में सूखापन होता है, चश्मे का नंबर आ सकता है। अगर बच्चे हैं तो उनकी जो एकाग्रता है, एकाग्र शक्ति है, वो कम होती है, कंसंट्रेशन पावर कम होती है। तो मोबाइल का ग्लॉकोमा से संबंध नहीं है, लेकिन आंखों में सूखापन, आंखों की नजर जो रोशनी है वो
1: मानसिक चिड़चिड़ापन आ सकता है।
0: मानसिक चिड़चिड़ापन बिल्कुल वो आ सकता है,
2: नजर में असर हो सकता है।
1: हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आई फ्लू मतलब अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं और गंदगी आंखों में चली जाती है तो आई फ्लू होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसका आई फ्लू का समय पर इलाज कितना जरूरी है या अपने आप ठीक हो जाती है ये आई फ्लू की बीमारी?
0: जी आई फ्लू का इलाज समय पर जरूरी है सर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आई फ्लू सेल्फ लिमिटिंग भी हम मानते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ हमने आंख लाल हुई थी, दो तीन दिन में अपने आप सही हो गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की दो तीन दिन में सही हो। कई बार आई फ्लू जो आंख की बाहरी सतह है कंजक्टिवा, उससे फैलकर जो आंख का हीरा है, पारदर्शी सतह है कॉर्निया, उसको इन्वॉल्व कर लेता है। और अगर एक बार कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो हमारी आंख की रोशनी कम कर सकता है और वो जो असर है वो जीवन भर रह सकता है।
1: तो मैंने बचपन में देखा है गांव में कुछ लोगों को आई फ्लू हुआ और उसके बाद में उनकी आंखों में पीप आने लग गया और उसके बाद में उनकी रोशनी जाती रही। तो ये इस हद तक बढ़ सकता
0: है। ये इस हद तक बढ़ सकता है, तो इसलिए कभी भी आई फ्लू को ऐसे नहीं सोचना है कि दो तीन दिन में सही हो जाएगा, अपने आप देखते हैं, वो नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि आंख लाल हो रही है, चुभन हो रही है, आंखें चिपक रही है, तो तुरंत दिखाएं, क्योंकि ये लक्षण सामान्य होते हैं। आंखों के लाल होने के बहुत से कारण हो सकते हैं।
1: एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं
0: जी।
3: हेलो। हाँ रामनारायण जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते, बहुत स्वागत आपका।
3: मैम प्रियंका मैम को भी नमस्ते
0: जी। नमस्कार।
3: हाँ मैं महेश मेटी कोटा से ही बोल रहा हूँ। एज मेरी 67 के करीब है ना, और मेरी वाइफ की 64 करीब है ना।
1: जी
3: दोनों को ही आपके तत्वाधन में जांच हो चुकी थी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन बताया गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो क्या एक दिन छोड़ के दूसरी आंख का भी हो जाएगा? दोनों आंखों का दो दिन के अंदर अंदर हो जाए, मतलब आपके यहाँ रहते हुए हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा। और दूसरी ये है कि उनका HbA1c 6.7 रहता है, और वैसे नॉर्मल टेस्ट कराते हैं पीपी और फास्टिंग तो वो ठीक आता है ब्लड शुगर का, तो ये इसका भी क्या इम्पैक्ट रहेगा मतलब?
0: जी सर, आप मोतियाबिंद ऑपरेशन जो आप करवाना चाहते हैं, यूजुअली हम दो आंखों के ऑपरेशन के बीच में 5 से 7 दिन का डिफरेंस रखते हैं।
1: अच्छा।
0: उसका रीजन ये होता है, वैसे आजकल जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है सेफ होता है, फेको पद्धति से होता है, इन्फेक्शन की रिस्क नहीं होती है, बट फिर भी हम 5 से 7 दिन का अंतर इसीलिए रखते हैं कि अगर कोई पॉइंट्स में भी 0.1% भी चांस हो कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो, तो एक से दूसरी आंख में ना हो, तो इसलिए कम से कम 5 से 7 दिन के अंतर पर आप ऑपरेशन करवाएं। दूसरी चीज, आपकी शुगर अगर आप बोल रहे हैं HbA1c 6 से 7 के बीच में है, तो ये नॉर्मल है, कंट्रोल्ड शुगर है, तो आप जब भी ऑपरेशन का प्लान करें शुगर कंट्रोल में रहे, ब्लड शुगर 150 से 200 के बीच में ही रहे, उसके ऊपर ना रहे। पोस्ट प्लांडियल जो है पीपी
3: के नीचे ही रहती है बस,
0: तो सर आप कभी भी करवा सकते हैं अगर 150 के नीचे रहती है तो।
3: थैंक यू मैम,
1: बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर श्रोताओं हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद में कार्यक्रम में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक फोन नहीं किया है, फोन करना चाहते हैं, तो 1.5 मिनट के बाद फिर से आपके लिए हम इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे।

0: छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711 9602236306। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर, 1213 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट, 5A10 रंगबाड़ी रोड, तलवंडी, कोटा।
2: लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
1: जी हाँ, आप भी अपनी मुस्कान और हंसी से अब मोगरे के फूल बिखेर सकते हैं। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। मोबाइल 9928085808।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी से इस समय जारी है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं और डॉक्टर की सलाह। हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका इंदौरिया, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फोन लाइन है 2941142 यानी 2941142, STD कोड 0744, इस नंबर से पहले मिलाएं। अच्छा डॉक्टर, अब ये बताइए कि अभी क्या है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, और कई बार हमने देखा है कि पानी में आंखें लाल हो जाती हैं और वो थोड़ी परेशानी करती हैं, तो ये स्विमिंग पूल के पानी से किसी तरह का नुकसान हो सकता है या ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें?
4: जी, क्या है कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है, तो वो थोड़ी एलर्जी कर देता है।
3: अच्छा,
4: आंखों में।
3: अच्छा,
4: तो इस वजह से स्विमिंग पूल में अगर हम बिना स्विमिंग गॉगल्स पहने स्विमिंग कर रहे हैं तो वो आंखों में लालपन करेगा।
3: आएगा।
4: तो हमें सावधानी यही रखनी है कि स्विमिंग पूल में जब भी बच्चे बड़े जो भी जा रहे हैं तो स्विमिंग गॉगल्स के बिना स्विमिंग नहीं करें। दूसरा कि समर्स का टाइम है तो किसी भी आप स्विमिंग पूल में बच्चों को या लेकर जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो अगर इन्फेक्शन है किसी को तो वो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस है, मतलब एक से दूसरे को फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्विमिंग गॉगल्स अगर पहने हुए रहेंगे तो आंखों में इन्फेक्शन की रिस्क भी कम रहेगी।
3: अच्छा अच्छा, एक हम घरेलू चीजें कुछ डालते रहते हैं आंखों में, जैसे एक तो कहते हैं कि एक घरेलू काजल जो बनाया जाता है ना, पहले इसके हाड़ोती में ही मैं बताऊं अगर, तो हमारे यहाँ पौनी होती थी, तवा जिसको कहते थे देसी, तो उसकी जो काली काली जो वो निकलती उसको मिला के घी में ऐसे ऐसे देसी काजल बनाया जाता था, वो लगाना। और अभी शहरों में तो गुलाब जल वगैरह इस तरह के डालते हैं, तो ये सारी चीजें क्या आंखों में फायदा पहुंचाती या क्या रहता है इनका?
4: जी नहीं, ये आंखों के लिए नुकसानदायक है। कोई भी काजल हो, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो बाजार से लिया हुआ हो, अगर हम उसे रेगुलर वे में यूज कर रहे हैं, रोज हम काजल लगा रहे हैं, तो जो हमारे आंखों की जो आंसू के जो रास्ते होते हैं, ओपनिंग होती है, उनको वो लंबे टाइम तक लगाने पर ब्लॉक कर देते हैं। आंखों की जो आंसू की ग्रंथियां, उनमें सूजन आने लगती है, और फिर जो नॉर्मल आंसू की जो परत बननी चाहिए वो नॉर्मल नहीं बनती। सूजन आने के बाद में आंसू की लेयर एबनॉर्मल हो जाती है, फिर हमें पानी आने की शिकायत लंबे टाइम पर रहने लगती है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि आंख में गुलाब जल डालना, ये बहुत ही फेमस सा है जो हम बहुत सुनते हैं आमतौर पर कि आंख में गुलाब जल हमने डाल दिया
3: तो आंखों में ठंडाई आएगी, ऐसे आंखें साफ होंगी, ऐसे ऐसे,
4: लेकिन वो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आंखों में लालपन होने का, जलन होने के बहुत से कारण होते हैं जो कई बार अचानक से कुछ ही दिनों में हमारी आंखों की रोशनी भी जाने का कारण बन सकते हैं। तो अगर हम जो घरेलू नुस्खे जो अपनाते हैं उसमें जो उसकी वजह से जो इलाज में देरी होती है वो कई बार हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, तो किसी भी तरह की घरेलू चीजें आंख में नहीं डालनी चाहिए।
3: अच्छा, बच्चों की आंखों का कैसे ध्यान रखें गर्मियों में, बच्चों खासतौर से ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज में बच्चे लगे रहते हैं जिनकी वजह से उनकी आंखों में परेशानियां हो सकती हैं?
4: जी, बच्चों को तेज धूप में खेलने से हमें रोकना है कि अगर बच्चे खेलें तो शाम के समय खेलें, और अगर हमें हाँ कि जरूरी है कि धूप में जा रहे हैं तो कैप लगाएं बच्चे, सनग्लासेस यूज करें, और तीसरी चीज बच्चों को हाथ धोने की हैबिट डालें कि बच्चे आंख पे हाथ नहीं लगाएं, और घर पर जब

0: जाए तो हमेशा साबुन से हाथ धोएं। ये कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल में अपनाएंगे तो बच्चों को गर्मियों में आंख का इन्फेक्शन नहीं होगा। एक सबसे जरूरी चीज कि अगर बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं तो घर पे हैं तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो मोबाइल स्क्रीन की जगह बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज में, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें।
1: ये समाज के सामने, सबके सामने एक नई चुनौती आई है कि हम कैसे बच्चों को स्क्रीन से हटाएं और कैसे सामान्य उनका जो पहले का तरीका था वहां कैसे लाएं। ये निश्चित रूप से समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही एक चुनौती है।

0: सामान्य उनका जो पहले का तरीका था वहां कैसे लाएं, ये निश्चित रूप से समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही एक चुनौती है। तो देखते हैं इसमें हम कब सफल हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, यदि गर्मियों में आंखों में कोई धूल का कण चला जाए, या कोई गांव में तो ऐसे होते हैं कि जैसे फसल के अवशेष होते हैं, है ना, गेहूं की बाली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और बड़ी मुश्किल से निकलती है। आप लोग जानते होंगे कई केसेस आते होंगे आप लोगों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, वो अंदर जाके चिपक जाते हैं आंख में। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए फिर, किस तरह से? कई लोग सोचते हैं आंखों को मसलते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: जी, आंख में धूल का कण या घास फूस या गेहूं की बाली किस या फसल का कोई भी हिस्सा,
0: जी,
1: कुछ भी आंख में किसी भी तरह का बाहरी कण जाने पर हमें इमीडिएटली उसी समय ठंडे साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। और अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी घास के कण हैं, फसल के कण हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ फंगस के इन्फेक्शन जो है, फंगस का जो एलिमेंट है वो चिपका हुआ रहता है, और वो एक बार अगर आंख में प्रवेश कर गया तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आंख में घाव बनाएगा, अल्सर करेगा, आंख में मवाद पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी और रोशनी परमानेंटली जा सकती है। तो अगर खेत में काम करते समय अगर आंख में चोट लगी है, आंख में कुछ कण गया है, तो उसको बिना देरी के आपको नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
0: अच्छा, कई बार आंखों में कुछ चीजें चली जाती है, जैसे जंग, लोहे का जंग, और लोहे के छोटे कण बहुत जो आप लोग सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं उन्हें, लेकिन वो आंख में इतनी तेज दर्द, इतनी तेज जलन करते हैं कि व्यक्ति मतलब उसके लिए कुछ मिनट सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: आंख में लोहे का कण जाना एक इमरजेंसी कंडीशन होती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उसकी स्पीड अगर तेज है तो आंख के अंदर की परत तक भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिना देरी किए नेत्र विशेषज्ञ की आपको सलाह लेनी चाहिए, ये एक पूरी तरह इमरजेंसी कंडीशन है।
0: अच्छा, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास में भागना चाहिए, वो कौन सी स्थितियां हैं आंखों में इमरजेंसी जो परेशानियां होती हैं उनको लेकर?
1: जी, आंखों में होने वाली इमरजेंसियों में ज्यादातर जो है वो रोशनी से जुड़ी हुई है कि
0: अच्छा।
1: अगर आपको अचानक से कम दिखने लगे,
0: अचानक से
1: नजर का कम होना, या अचानक आंख के आगे काला धब्बा आ जाना, काला पर्दा आ जाना, ये एक इमरजेंसी है जिसके लिए आपको बिना देरी किए तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। या फिर आंख में कोई भी केमिकल आपके चला गया है, उसमें उस स्थिति में आपको तुरंत जाना है। आंख में चोट लगी है, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बिना देरी किए
0: तुरंत जाना चाहिए। अच्छा, एक हमारे यहाँ पर चूना का एक बड़ा उपयोग होता है, है कि नहीं? तो वो बहुत बुराई है हालांकि वो, लेकिन लोग छोड़ नहीं रहे हैं, आजकल भी वो चूना लगातार चल रहा है। तो वो कई बार उसकी पिचकारी छूटती है और वो आंखों में चली जाती है, तो उससे क्या आंखों को ज्यादा नुकसान हो सकता है?
1: जी, चूने से होने वाली आंख में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा होता है, और चूना अगर आंख में चला गया है तो आपको इमीडिएटली आंख को धोना है। ये सबसे बड़ी सबसे पहली चीज है कि आंख को तुरंत प्रभाव से धोना है, बहुत सारे पानी से आंख को आप अपने घर पे पहले धोएं और तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि चूने से आंख की जो पूरी बाहर की सतह है वो पूरी जल जाती है, पूरी बर्नड हो जाती है, और जलने के बाद में जो रिकवरी फेज है अगर हमने समय पर इलाज नहीं लिया है तो आंख की सतह आपस में चिपक जाती है। तो लंबे टाइम पर आंख की रोशनी भी चली जाती है, आंख का घूमना बंद हो जाता है, आंख की सतह आपस में चिपक जाती है।
0: अच्छा, ऐसी कौन कौन सी जो हमारे यहाँ पर कार्य क्षेत्र है जहाँ पर आंखों की रोशनी को, आंखों को चोट लगने की ज्यादा संभावनाएं हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है?
1: जी, जैसे माइन वर्कर्स हैं, जहाँ वेल्डिंग वर्कर्स हैं, जहाँ आंखों में यूजुअली चोट लगती है, आप जैसे बोल रहे हैं चूने का एक्सपोजर है, तो जो लोग पुताई का काम करते हैं या चूने का या किसी भी केमिकल, कोई भी केमिकल हो, चाहे वो एसिड हो, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, सीमेंट का जो सीमेंट से जुड़े जो उद्योग हैं उनमें जो काम करते हैं, उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि बिना प्रोटेक्टिव आईवियर्स के, मतलब आंखों के जो सुरक्षा वाले जो गॉगल्स आते हैं उनको लगाए बिना आप काम ना करें।
0: अच्छा, एक सवाल और है, कई लोग आपसे पूछते होंगे कि सब जो है हम ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है

0: ये कार्यक्रम अगले गुरुवार को फिर होगा नए विषय के साथ, तो जरूर सुनिएगा। अब आज के इस कार्यक्रम से रामनारायण मीणा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की।

0: श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नंदली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज। साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। लता मंगेशकर के आवाज में पलकों की छांव में फिल्म का ये गीत सुनिए। गुलजार के बोल हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म दो रास्ते में सुना। आनंद बख्शी ने गीत लिखा और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का यह आखिरी गीत, फिल्म का नाम है जिसने दिल ने जिसे अपना कहा। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर और महमूद का गीत है और हिमेश रेशमिया ने इसका संगीत तैयार किया।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा का गाना भी आपने सुना। फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है।

कार्यक्रम घर आंगण में आप सभी को घणो घणो स्वागत छे, अभिनंदन छे। मूँ छू आपकी अनीता बणा, आप सबके ताई मारो घणो घणो राम राम। काई हाल चाल छे भण्याओ? गर्मी जोरा की पड़ रही छे और बरसात भी आवाऊ ही कर रही छे। अशा मौसम में स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखाना की जरूरत छे, तो साफ सफाई को ध्यान रखाना और बरसात को पानी एक तो न हो वह इका लेख कबाड़ो कचरो सब न हटा दा। न तो कायो छे कि पुराना जो सामान छे न वो खुला में पड़िया रह छे और वाम पानी भेड़ो जाओ छे और फिर उमा मच्छर माख्या पैदा हो जाओ छे जो क आपन के ताई बीमार कर सके छे। तो ध्यान रखाना बण्याओ। आपने ये लाइना घणी बार सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, भारत माता की सच्ची बेटी वीरता की कहानी थी। हाँ बण्याओ, आज यूं ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस छ, जी को नाम सुनताई साहस स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना जाग जाओ छ। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 का दिन देश की रक्षा करता हुआ अपना प्राणा को बलिदान दे दियो छो। जब अंग्रेजा ने झांसी पर कब्जो करवा की कोशिश करी तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानबा की बजाय लड़वा को निर्णय लियो। वान अपना छोटा सा बालक कताई पीठ पर बांधियो और युद्ध का मैदान में उतर गई। वान की कम मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और वान यह भी साबित कर दियो क महिला कोई भी क्षेत्र में पुरुषा से कम कोई न, कशो भी क्षेत्र हो वह चाहे लड़ाई कोई मैदान ही हो वह, पर कशा भी क्षेत्र में महिला पुरुषा से कम कोई न। वहां को बलिदान अपनी सिखाओ छ क अपना अधिकार सम्मान और देश का लेखा हमेशा डट कर खड़ो रहनी चाहिए। बण्याओ, रानी लक्ष्मीबाई की ख्याणी केवल इतिहास ही कोई न बल्कि मैं हर महिला के लेखा प्रेरणा छ। आज वहां का बलिदान दिवस पर आपन भी संकल्प ला क आपना बालका के ताई देशभक्ति साहस और आत्मसम्मान की सीख देऊंगा और बेटियां न आगे बढ़वा का अवसर प्रदान करूंगा। बण्यो, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस छ और ऊछ सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ई दिवस के ताई मनावा को उद्देश्य लोगों का ताई यो समझाबो छ कि आपनो भोजन केवल पेट भरवा को साधन ही कोई न बल्कि यो अपना स्वास्थ्य पर्यावरण और किसाना का जीवन से भी जुड़े हुए छ। इको सरल अर्थ छ अशो भोजन और खान पान की व्यवस्था जो स्वास्थ्य का लेखा आची हो, पर्यावरण के ताई नुकसान न पहुंचावे और किसाना की आजीविका के ताई भी मजबूत बनावे। अपनी बण्या परिवार का भोजन की योजना पोषण और खाद्य सामग्री का सही उपयोग का माध्यम से स्वस्थ परिवार और स्वच्छ पर्यावरण बनावा में बड़ो योगदान दे सके छ। तो आपन भी संकल्प लेवा क आपन पौष्टिक भोजन अपनाऊंगा, भोजन की बर्बादी का ताई रोकूंगा और आबहाली पीढ़ी का लेख स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण बनावा में सहयोग करूंगा।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भण्याओ, अब आपन आज सुनांगा एक भेंट वार्ता, जीवा आपनी जानकारी दे रहे छे डॉक्टर रंगोली चौहान जी, और बातचीत को विषय छे महिलाओं में रजोनिवृत्ति की समस्याएं और योग। तो फिर सुनाया भेंट वार्ता। रजोनिवृत्ति भी एक स्वाभाविक अवस्था छे, यो टाइम हो छे जब मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जावे छे। आमतौर पर 45-50 की उम्र के बीच में पड़ाव आव छे। ई टाइम कई तरह की समस्या से आपनी बण्या ने गुजरनी पड़े छे, पण ई महत्वपूर्ण समय कताई सही जानकारी, संतुलित दिनचर्या और योग का माध्यम से सहज और सरल बनायो जा सके छे। आज ई विषय पर चर्चा करबा के लेख आपने साथ उपस्थित छे डॉक्टर रंगोली रानी चौहान जी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वस्थ व्रत एवं योग विभाग वेद दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक महाविद्यालय तलवंडी कोटा से। आपन सबसे पहली तो डॉक्टर साहब को अपना कार्यक्रम में स्वागत करा छा। राम राम डॉक्टर साहब।
4: राम राम
3: डॉक्टर साहब। जशो का आज आपनो विषय छे रजोनिवृत्ति की समस्या और योग, तो उनका संदर्भ में सबसे पहली तो आप वहां की बण्या के ताई यह बताओ कि रजोनिवृत्ति काई हो छे और की उम्र में हो छे, या एक बीमारी छे या फिर एक सामान्य प्रक्रिया छे।
4: आप सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है रजोनिवृत्ति, इसका परिचय देना चाहूंगी। रजोनिवृत्ति यानी कि मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना, यह एक सामान्य प्रोसेस है, यह किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। यह प्रत्येक महिला के जीवन में आने वाली एक अवस्था है जो कि सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती है। अगर यह इससे पहले आ रही है तो आप किसी भी डॉक्टर से चिकित्सक के परामर्श ले सकती हैं।
3: और अगर 55 वर्ष का बात ताई भी न हो तो,
4: मतलब 50 से 55 की उम्र तक हो रही है।
3: हाँ।
4: लेकिन अगर 55 से भी ज्यादा उम्र तक अगर लगातार मेंसेस बने हुए हैं और वो अनियमित हैं, तो चिकित्सक परामर्श की आवश्यकता है।
3: रजोनिवृत्ति का टाइम बढ़ा के ताई कई कई शारीरिक समस्या हो चुके डॉक्टर साहब, और कई मानसिक समस्या भी हो जाओ चुके।
4: हाँ, महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय शारीरिक समस्याओं के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी होती है। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो मासिक धर्म को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्री मेनोपॉजल फेज होती है जो कि मासिक धर्म खत्म होने से पहले की अवस्था, लगभग 42 से 48 तक आप माने तो ये फेज जो होती है प्री मेनोपॉजल फेज कहलाती है। ये लगभग 6 से 8 साल तक रहती है। पूरे महीने के 5 दिन मासिक धर्म के माने जाते हैं। 5 दिन या तो कन्वर्ट हो जाए, 10 दिन में, 15 दिन में लगातार मासिक धर्म चल रहा है, या तो अधिक मात्रा में हो गए या कम मात्रा में हो गए, या मासिक धर्म महीने के महीने आते हैं तो महीने का समय चेंज होकर 30 से 45 दिन हो गया, या 2 महीने हो गया, या 3 महीने हो गया, या मासिक धर्म का समय 15 दिन ही रह गया, या हर 10-10 दिन में मासिक धर्म आने लगा। तो इस तरह की मासिक धर्म से रिलेटेड अनियमितता दिखने लगती है प्री मेनोपॉजल फेज में। तो रजोनिवृत्ति कब मानी जाएगी? कि रजोनिवृत्ति हो गई है, लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म की अनुपस्थिति होना ही रजोनिवृत्ति में काउंट होगा। और इसके बाद की फेज आती है, रजोनिवृत्ति के बाद की फेज आती है, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फेज। तो पोस्ट मेनोपॉजल फेज और मेनोपॉजल फेज में जो शारीरिक लक्षण आते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ।
3: एक मिनट में आपका ताई रोक बुझाऊंगी। आपने जैसा की एक साल ताई अगर महावारी ना हो तो आपन मानना चाहकर रजोनिवृत्ति होगी, पर कई बड़िया से मन सुनी छे, मारो खुद को भी अनुभव छे, साल भर के बाद में 1-2 महीना और ऊपर होकर फिर कोई के वापस से महावारी आ जाओ छे एक बार, और फिर वापस बंद हो जाओ छे।
4: अगर रजोनिवृत्ति के बाद, जैसे एक साल तक पीरियड्स नहीं आए या एक साल तक मासिक धर्म नहीं हुआ, उसके पश्चात

0: अगर हो रहा है और कम मात्रा में हुआ और रुक गया तो दिस द नेचुरल, अगर हम उसको मान सकते हैं वो सामान्य प्रक्रिया है। अगर अगर रजत स्राव ज्यादा है तो आप इसे चिकित्सकीय परामर्श लेंगे ही लेंगे इस अवस्था में।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हो सकता है कि गर्भाशय में संक्रमण हो
1: जी, जी
0: मूत्र मार्ग में संक्रमण हो
1: जी,
0: उस कारण इसका कोई ना कोई कारण होगा ही होगा
1: जी।
0: अगर एक साल तक मासिक धर्म होने के पश्चात पुनः स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई अस्वस्थता है। रजो निवृत्ति क्या है? एक स्वस्थ प्रोसेस है, ये बीमारी नहीं है।
1: हाँ,
0: है ना, ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो सिंपल प्रोसेस जो था वो मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा कोई चीज घटित हो रही है तो वो कहीं ना कहीं व्याधि है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और दूसरी बीमारी उसके पीछे है
1: जी। अब आपन रजोनिवृत्ति का लक्षण पे चला, काई काई लक्षण तो सामान्य हो जाए और काई हो दिखवा पे माई तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए।
0: जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको मासिक धर्म की अनियमितताएं बता ही दी है। उसके अलावा महिलाओं में हॉट फ्लैशेस एक टर्म होती है, इसको अधिकतर महिलाएं पहचान ही नहीं पाती कि शरीर का तापमान एकदम से बढ़ता है, अचानक से गर्मी लगेगी, तेज गर्मी लगेगी और फिर पसीना आने लगेगा।
1: हाँ।
0: ये महिलाओं में होता है मेनोपॉजल फेज में
1: जी।
0: दूसरा सिम्टम यह है कि रात में अचानक पसीना आ जाता है।
1: हाँ, सोता सोता ही
0: सोते सोते एकदम से घबराहट हुई, एकदम से पूरा पसीना हो गया। योनि मार्ग में सूखापन, ड्राइनेस हो जाती है, कभी कभी खुजली में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नींद में अनियमितता होती है,
1: नींद ना वो भी कोई कारण
0: है। किसी किसी में क्या होता है, नींद की अधिकता हो जाती। इसके साथ साथ मानसिक लक्षण भी महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे कि फीमेल जो है बड़ी खुश है फिर एकदम से ही वह दुखी हो जाती है, या एंजाइटी, वो किसी भी प्रकार की चिंता कर रही है, ओवरथिंक कर रही है, या अवसाद की स्थिति है, तो ये सारी मानसिक लक्षण भी उसमें पाए जाते हैं। स्मृति का विभ्रंश होने लगता है, दिमागी धुंधलापन, ब्रेन फोग जिसको बोलते हैं, वो होने लगता है। फीमेल्स भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है उनको, किसी चीज को रखने के बाद उसका मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये वाली चीजें होने लगती है मेनोपॉजल फेज में
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अपना बार 21 जून योग दिवस भी मनाऊंगा और आपनो आज को विषय भी यही छे, तो ये जो रजो निवृत्ति के टाइम में महिलाओं में जो घना सारा शारीरिक और मानसिक लक्षण हुआ छे, अशा में योग और सही जीवन शैली माके ताई की प्रकार से मदद कर सके छे, थोड़ा सा ये विषय पर माके ताई बताओ।
0: जरूर, आफ्टर मेनोपॉज
1: जी
0: फीमेल्स में वजन बढ़ने लगता है।
1: मोटापा आ जाए,
0: मोटापा, और मोटापा भी कहाँ का, पेट के इर्द गिर्द। दूसरा मेन सिम्टम होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है,
1: भोजन पचवा में परेशानी
0: आने लगती है, और उनके बाल भी पतले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: त्वचा रूखी हो जाती है, सूखी हो जाती है।
1: हाँ।
0: तो हम लोगों को क्या करना है कि योग के माध्यम से, आहार के माध्यम से अपनी जीवन शैली को नियमित रखते हुए इस मेनोपॉजल फेज को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाते हुए जिंदगी को जीना
1: जी।
0: तो योग इसमें बेनिफिशियल है कि वो आपका शारीरिक दिनचर्या जो है उसको रेगुलेट करेगा, जो आपका पाचन तंत्र है उसको सुचारू रूप से रखेगा, तो उससे जो आपका वजन बढ़ने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी।
1: अच्छा,
0: लेकिन अधिकतर फीमेल्स ध्यान ही नहीं रखती हैं।
1: और योग में आप कहीं बता पूछा होगा,
0: कुछ विशेष योग हैं जो मेनोपॉजल फेज में फीमेल्स को करने चाहिए, उनमें से कुछ आसन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहला आसन है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन में क्या होता है कि ये फीमेल्स कहीं पे भी कर सकती हैं, दीवार के सहारे किया जाने वाला एक आसन है। इसमें क्या किया जाता है, दीवार के सहारे पैर ऊपर उठाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: दोनों पैर पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की तरफ उठाएं।
1: अच्छा,
0: जिससे रक्त संचार में सुधार होता है, शरीर में ठंडक आती है और शारीरिक तनाव भी कम होता है।
1: अच्छा,
0: तो जितनी देर फीमेल अपनी टांगे या अपने पैर जो हैं दीवार के सहारे ऊपर रख सकती हैं वो उतनी देर रखें। इसके अलावा होता है एक आसन है बालासन, इसको शिशु आसन भी बोलते हैं। इस आसन में क्या किया जाता है, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और इनके ऊपर बैठ जाते हैं, वज्रासन की स्थिति, एड़ियों पे आप बैठ जाएं, फिर दोनों घुटनों के बीच में यथासंभव दूरी बना लें।
1: अच्छा,
0: फिर अपने जो ऊपर वाला शरीर है, सिर है, दोनों हाथ है, धड़ है, इनको आगे की तरफ झुकाना है और अपने सिर को मैट से टच करने की कोशिश करनी है, सिर को जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप तकिए का सहारा ले सकती हैं, तकिया लगा के उस पे आप बैंड हो जाएं।
1: अच्छा,
0: कुछ देर उसी स्थिति में रहना है
1: जी,
0: ये माइंड को रिलैक्स करता है, चिंता अवसाद की कंडीशन में यूजफुल है
1: जी। तो आपन ये जो आप योग बता रहे हो, महिला अपना आप कर सके या फिर कोई

0: कि देख रेख में करवो जरूरी।
1: देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी आसन हो
0: जी,
1: भले वो कठिन हो या सरल हो, एक बार योग प्रशिक्षक की देख रेख में करना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से ये वर्क करता है। तो कहीं शारीरिक स्थिति अगर आपकी गलत हुई तो आपको मसल पेन कर सकता है।
0: हाँ, आप योग या कोई आसन करबो छाओ छो बण्याओ तो फेली उ कताई प्रशिक्षित व्यक्ति से सीखो जो करवाओ छे या करे छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके बाद ही आप करो, क्योंकि गलत योग से आप कताई फायदा की जगह नुकसान भी हो सके। आप मां की बण्या कताई थोड़ो सो यो भी जानकारी दे दो कि कोटा में योग प्रशिक्षण कहाँ कहाँ हो छे।
1: कोटा में तो हर एक गार्डन में, हर एक पार्क में योग संस्थाएं योग करवा रही हैं। अभी इस समय तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं योग के प्रति।
0: हाँ।
1: तो आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे योग संस्थान आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो डेली रूटीन में आयुर्वेद कॉलेज में ही सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच में योगा क्लासेस होती है, वो निःशुल्क है।
0: अच्छा,
1: तो उनका लाभ आप ले सकती हैं। किसी भी तरीके के आसन, योगा प्रोटोकॉल है, या किसी विशेष स्थिति, किसी विशेष व्याधि से रिलेटेड आसन अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ निशुल्क अवेलेबल है।
0: 21 जून ना अपन योग दिवस मनाऊंगा ही सही, तो ई बारा में योग जागरूकता का बारा में वहाँ की ग्रामीण भेड़िया के लेखक काई के पूछा होगा, वहाँ के ताई काई संदेश दगा।
1: योग दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है
0: जी
1: देश में, और हर साल योगा दिवस पर एक थीम रखी जाती है। इस बार का जो योगा है या योग दिवस है उसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यह इस बार की थीम है।
0: अच्छा।
1: इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि रजोनिवृत्ति के फेज हमने 55 साल तक भी बताई है, ठीक है। 55 साल के बाद तो आपको कहीं ना कहीं ये मानना ही पड़ेगा कि आप लोग वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब आप मीनोपोजल फेज से निकल रही हैं और तभी आपने जब ये अपनी जीवन शैली में सुधार किया, योग को अपनाया, डाइट को अपनाया, अच्छा जीवन शैली कर ली, तो आपकी वृद्धावस्था भी बहुत सुचारू रूप से चलने वाली है। तो इस बार की जो थीम है उस थीम को अपनाते हुए आप लोग योग पर विशेष ध्यान दें, योग दिवस के दिन अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन योगा क्लासेस भी चल रही हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉलेजेस में भी जा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब मां कहता है आप प्राणायाम का बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दो, वह भी एक सरल व्यायाम छे मारा ख्याल से बैठ कर करवा वालो, तो मां की बहनिया ने उनकी भी थोड़ी सी जानकारी दे दो।
1: प्राणायाम क्या है? प्राण यानी कि वायु से लिया गया है शब्द को, प्राण यानी कि वायु
0: जी।
1: हम लगातार सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हम प्राणों का आयाम कर रहे हैं, प्राणों का नियंत्रण कर रहे हैं, तो यही है प्राणायाम।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो आप हॉट फ्लशेस, रात में जो पसीना आना या नींद नहीं आना या आपको जो भी मानसिक समस्याएं हैं लाइक चिंता हो रही है किसी चीज की, आप सोचे ही जा रहे हैं, विचार किए जा रहे हैं, तो इन सब से निजात दिलाने के लिए कुछ प्राणायाम है। जैसे कि सबसे पहले है शीतली प्राणायाम।
0: अच्छा।
1: शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकाल के चोंच बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस चोंच से हवा अंदर की तरफ खींचते हैं, कुछ समय के लिए सांस को रोकते हैं, फिर नाक से सांस छोड़ते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को लगभग हमें 10 मिनट तक करना।
0: अच्छा।
1: उसके बाद है शीतकारी प्राणायाम।
0: अच्छा।
1: शीतकारी प्राणायाम में क्या करते हैं, दोनों दांतों की पंक्तियों को मिला लेते हैं, फिर इनसे हवा खींचते हैं, मुंह बंद करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर नाक से सांस छोड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: ये प्रक्रिया करें आप 10 मिनट। इसके अलावा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, तो अनुलोम विलोम में हम दोनों नोस्ट्रिल, दाएं और बाएं नासा छिद्रों का यूज करते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लेकिन हम इसमें मीनोपोज की फेज में सिर्फ बाएं नासा छिद्र का ही प्रयोग करना है।
0: अच्छा।
1: बाएं से ही सांस लेनी है
0: और
1: बाएं से ही छोड़नी।
0: अच्छा।
1: इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम।
0: अच्छा, अच्छा।
1: क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है तो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करेगी। इसके अलावा एक प्राणायाम और है, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजान करते हुए उस प्राणवायु को बाहर की तरफ निकालते हैं। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में आप इस आसन को, इस प्राणायाम को करें तो ये बहुत बेनिफिशियल है।
0: प्राणायाम का बारे में बताया, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये तो आराम से कोई भी कर सके। तो डॉक्टर साहब આપના આપનો મહત્વપૂર્ણ સમય માંથી ભણ્યા કા કાર્યક્રમ કા લેખ ખાડ્યો ઓર મહત્વપૂર્ણ જાણકારી માહિતી ઈ લેખ આપકો.

प्रेमा और बढ़िया हूँ। अब आपन एक मीठो सो लोक गीत भी सुन ला जी की आप सबके ताई घणी देर से बाट नाल रह जो आप सब, तो फिर सुनायो मीठो सो लोक गीत मृदुला सक्सेना की आवाज में।

और बण्याओ अब आपना टेम छ जानकारी को। जानकारी में आज छ महिलाएं पर्याप्त मात्रा में पिए पानी। बण्याओ आपना शरीर का लेखा पानी घणो जरूरी छ। आपन सभी जाना चाहिए बात का ताई आपन के ताई पानी जो छे ना वो पर्याप्त मात्रा में पीता रहनी चाहिए। यो शरीर का ताई स्वस्थ रखाण बा के साथ साथ घनी सारी समस्या से भी बचाव छे। पानी पीबा से शरीर को तापमान जो छे ना वो संतुलित रहवे छे। पाचन क्रिया बढ़िया होवे छे। कब्ज की समस्या कम होवे छे। स्वस्थ त्वचा और चमकदार त्वचा होवे छे। मूत्र संक्रमण से भी पानी बचावे छे। तो घर से बाहर खड़बा से फैली एक बोतल पानी साथ में रखाना। प्यास लागबा को इंतजार न करा। टेम टेम पर पानी पीता रहवा। पानी के साथ साथ हो सके तो छाछ नींबू पानी और मौसम के अनुसार फल भी लेता रहवा जो का आपन के ताई शरीर में पानी की मात्रा के ताई बनाया राख छे। तो बनाओ खूब सारो तो पानी पियो और या भी ध्यान रखाण जो बार बरसात को टाइम आ रहे छे तो बरसात में पानी गंदो भी आवे छे। मिट्टी मिली हुई रहे छे और भी हानिकारक तत्व में मल जावे छे। तो ध्यान रखाणो के पानी के ताई बरसात का टाइम पर उबालर या छाणर पीवा आपन बिल्कुल शुद्ध करके उन फेर पीवा। और बण्याओ एक साथ ही आपना जो छे कार्यक्रम के ताई अब आपन विराम दंगा यहाँ पे ही। अगली बार आपन फेर मलंगा नई जानकारी नया विचार और मीठा मीठा लोकगीता का लार। तो अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखाणो। गर्मी जाती जाती गर्मी में कई बार आपन बीमार हो जाओ अच्छा और आती बरसात में भी थोड़ो सो मन जिशा की माचर माखियां कोरियां सब की चीज जान को आप ध्यान रखाण जो। तो फिर अपना आपन के ताई बिल्कुल स्वस्थ रहनो छ क्योंकि आपन ही परिवार के ताई भी आगे के ताई संभालनो छ। अगर आपन बीमार पड़ जाऊंगा तो अपना परिवार न कुन संभालोगो फिर वो अपनी सेवा में लाग जाओगा और काम धंधा सब खोटी होगा फिर। तो इनका लेखा आपन के ताई ध्यान रखाना छ। तो फिर आज तो दो इजाजत चालना छ। फिर आप मलंगा आपसे राम राम।

0: अभी ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थीं, घर आंगन। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बजे हैं, अब अगले कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होंगे।
1: ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था उस समय, और जब जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, हाँ। और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन,

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके, तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता है।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना, वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है।

0: अभी तो जी ले कम से कम,
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा, मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
1: पढ़ाई में थे कैसे यार?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है।
1: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना कि सच को हम उसका सामना करने बड़ा कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको, कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, हाँ, तो एक गाना तो बन गया।
1: कौन सा?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है। और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है, है ना, ब्लैकमेल फिल्म का गाना है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राजवी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं। सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें है ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया मेरा, यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया।

0: ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार ये अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। पर अगले दिन शाम को हम लोग गए तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
1: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
1: कहां फंस गया,
0: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था, वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर एक डेढ़ महीने के बाद शो हुआ उसका और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा,
0: कुछ होने मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहां जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: बिजू भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पर तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहां फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूं कि किस्मत बड़ी चीज है, कहां पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब

0: सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोटे भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम। मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपिटरी में कि सुनो रेपिटरी ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपए मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मैंने। मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 × 18 = 18,000 में इतना इतना इतना, ना मैं वो आंकड़े में चला गया। बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपए मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 × 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रेपिटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं है काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
1: विजय भाई, अभी मौका है और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे। जी,
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें ये गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय

0: बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
1: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
0: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था।
1: अच्छा।
0: अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
1: ये जरूरत थी एक?
0: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो, ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
1: अभी भी?
0: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक, वो सारी हैं आसपास। ये कर दूंगा मैं, जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है। तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
1: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं।
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में, दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहा दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया। तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गई मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने। काफी समय बीत गया मतलब 1.5 घंटा, मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने। मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग के एनी वे, तो थक गई थी काफी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में, उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आप?
0: हाँ,
1: वही करवाया उसी के लिए
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये?
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं

0: इनके ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं। हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं। वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार, आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने देखा यार, उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका है। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें 2 फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन 2 फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात,
1: कहीं रुपये जाएगा।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिए कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने में उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो

0: 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
1: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
0: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
0: हाँ।
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लाप, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: Karan.
1: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका है दिलराज कौर।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे

0: उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का। और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद्ध किया हुआ ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: दैनिक भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई का प्रसारण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 12 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश

0: आप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनु

0: मीठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है।

0: तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है।

0: ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है।

0: से।
1: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
3: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर अब देश दुनिया में हर जगह। दोपहर के 12:30 हो चले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम और दिन में 1 बजे प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से होंगे।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन की संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1

1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेरबदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग्य और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी माझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सके, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल है कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का वो वर्णन आप कर सकते हैं। कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो

तीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार है शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी

दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए, तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संग जीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो, स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा लेना। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे, तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पति और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पैकेजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौका में संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है और चप्पू चलाता मां जी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ, चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदियां चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है।

क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही है वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि

कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वही श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती है तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

0: किया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों

0: का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक

0: गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ी, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत

0: सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है
0: जी।
1: तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि
0: महिला गायिका। तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है
0: जी।
1: तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो ए श्रेणी की कलाकार थी।
1: देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया
1: जी। और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारे, जो और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुक्मा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय

0: तो श्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल, कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके की फ्रॉड काफी होती है।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पे देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए,
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के

0: अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
1: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिली रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अभी तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की चाहिए।
0: बहुत सही सलाह।

0: ये जो नीतियां हैं इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

0: वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड

0: विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले एक गीत
1: सुन लेते हैं।
2: बता तू क्या लाना तुम लौट के आ

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाले स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पति है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: जो उनको पछतावा हो। और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको 2 बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
2: जी।
3: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही।
3: हाँ, ये तो है
2: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स

0: नहीं है मेरे पास.
1: अच्छा.
0: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ. सो एक टिप है मेरे पास.
1: जी बिल्कुल.
0: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ. यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. ये बहुत बड़ी टिप है.
1: बहुत जरूरी.
0: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं. तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले. बहुत अच्छी बात है. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं. तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं. और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है. और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं.
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है. विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटे, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें. इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें. और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे. और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है.
1: अरे वाह क्या बात है. और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है. उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया. तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है. कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं ऐसा कुछ.
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात.
1: बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए.
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है. खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है. मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें. बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए.
1: बिल्कुल. और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है. सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी. गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं. और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं.
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें. और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है. मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें. और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें. मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है.
1: बिल्कुल. और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे.
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा.
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था. हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था. जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं. ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई.
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें

0: छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तनवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।

0: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में।
1: जी,
0: वहां से भी एक एक एक
1: कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
0: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में।
1: जी,
0: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का। अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
0: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है, मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएं हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएं रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआ, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआ का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के, कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेस किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता। तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मैं मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफी शरारी था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए।

0: कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलूमोलो तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है,
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे आपने इसे एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तो भी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप

0: सकते हैं ना, कोर्ट में भी मदद करता है,
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है। उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन
0: जी। कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। हाँ। एंड वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
0: हाँ हाँ।
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
0: जी,
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तन्वर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तन्वर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब के स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन

0: ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है. आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी.
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए. फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं. वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं. आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है. और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी. हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा.
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत. वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी. लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए. कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में. मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था. और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें बुजुर्ग बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहां पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज्यादा करते हैं. उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन. और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती. खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी. फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे. हमने तो कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती. और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई. तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना.
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए. बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल

0: काफी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने, तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है, उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई

0: होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, स्पिरिट कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण वॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण है कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की हैं। आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए कर्नल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल, अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट।
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था वो, शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती हैं कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ

0: और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्सेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल कर।
1: डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था, वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्सेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद। तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ
0: जाता है। क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें
1: उन्होंने डांस किया
0: और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में, हमारा देश

0: कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
0: आज के युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो दिल में उतर जाती हैं। शाम के 5 बजे जब दिन थोड़ा थक कर रुकता है, तब शुरू होता है एक खास सफ़र, आकाशवाणी पर आपका अपना कार्यक्रम युवावाणी। आज का युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वो आज की सोच है, आज की ताकत है और बदलते भारत की पहचान है। किताबों से लेकर संघर्षों तक हर युवा लिख रहा है अपनी कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इस सफर में आपके साथ जुड़ रही हूँ मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त इशिका, दिल से दिल की ये बातचीत लेकर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हमारे युवानी कार्यक्रम की शुरुआत आज के संवाद के साथ।

दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का सपना हर व्यक्ति देखता है। कोई भी मंजिल एक दिन में हासिल नहीं होती, उसके पीछे छिपे होते हैं निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास। यही गुण व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सफलता पाने वाले लोग भी कई बार असफल हुए होते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये होती है कि वे असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि उनसे सीख लेकर फिर से प्रयास करते हैं। निरंतर प्रयास ही वो शक्ति है दोस्तों, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। और दोस्तों, प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। एक छोटी सी नदी चट्टानों को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि लगातार बहते रहने के कारण रास्ता बना लेती है। और इसी प्रकार सतत प्रयास करने वाले व्यक्ति भी जीवन की कठिन बाधाओं को पार कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और लगन आवश्यक।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो दोस्तों, इस बेहद ही प्यारे से गीत के बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी कि नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट की ओर।

दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस पर। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस पर हम सब उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। बचपन में उनका नाम मणि करने का था और वो साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की अद्भुत प्रतिमूर्ति थी। विवाह के बाद वो झांसी की रानी बनी। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार से लेने का प्रयास किया, तब रानी ने दृढ़ स्वर से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना का कुशल संचालन किया और वीरतापूर्वक युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर अद्वितीय साहस का परिचय दिया। और 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का अमर स्तोत्र बन गया। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, आत्मविश्वास और देश प्रेम से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका शहीद दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है।

0: देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो दोस्तों, आइए फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा गीत।

तो दोस्तों चलिए इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट के अगले विषय पर। दोस्तों आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी प्रख्यात विधिवेत्ता और राष्ट्रवादी नेता सी विजय राघवाचार्यर जिन्हें सेलम विजय राघवाचार्यर के नाम से भी जाना जाता है आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। विजय राघवाचार्यर का जन्म 18 जून 1852 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी कुशल वकील और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा और जन जागरण के लिए समर्पित कर दिया। और दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और कांग्रेस के शुरुआती संगठनात्मक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे राष्ट्रीय एकता, स्वशासन और जन अधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे और सन 1882 के सेलम दंगों के दौरान उन पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने कानूनी संघर्ष के माध्यम से अपनी निर्दोषता सिद्ध की। इस साहस और सत्य निष्ठा के कारण उन्हें द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाने लगा। दोस्तों विजय राघवाचार्यर का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी जयंती हमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट प्रेरक प्रसंग की ओर। और आज हम गुरु अर्जुन देव के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। एक बार कुछ लोग गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। वे गुरु जी के बारे में गलत बातें फैलाने लगे और लोगों को उनके विरुद्ध भड़काने का प्रयास करने लगे। जब ये बात गुरु जी के शिष्यों को पता चली तो वे बहुत नाराज हुए और उन लोगों को दंड देने की बात करने लगे। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि क्रोध और बदले की भावना से किसी का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें धैर्य और प्रेम से उसका उत्तर देना चाहिए। गुरुजी ने उन लोगों के प्रति भी कोई कटुता नहीं रखी और सभी के लिए भलाई की कामना की। कुछ समय बाद वो लोग गुरुजी की महानता और उदारता को समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुरुजी से क्षमा मांगी। गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया और प्रेम पूर्वक अपना लिया। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि क्षमा, धैर्य और प्रेम की शक्ति किसी भी शत्रुता को समाप्त कर सकती है।

बदले की भावना के बजाय यदि हम सद्भावना और करुणा का मार्ग अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता की पहचान है। और इसी के साथ चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में और आगे और फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा गीत। तो आइए सुनते हैं।

तो दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि शाम के 5:30 बजने वाले हैं, यानी कि अब वक्त आ चुका है आप सभी से विदा लेने का। फिर से मुलाकात होगी युववाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी रेडियो दोस्त इशिका को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम धीणेरी बाता।
1: बात्या, बात्या, बात्या।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ धाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बीरो चीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब, ये कार्यक्रम सुनने से मिल से पशुपालन से जुड़ी हो रही सभी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान
4: बड़ा सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
3: बंशी भाई रा
4: मोकड़ा मोकड़ा
3: राम राम।

0: बंसी भाई राम राम
1: राम राम अरखू भाई राम राम।
0: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो।
1: थे तो अरखू भाई सारी बात ता जानो हो।
0: जानो के माथू पसीनो टपक रही है पूछ रही हो बार बार है कई बात है।
1: देखो सा सुबेरी बेला और संजेरी बेला यानी बी टाइम आदमी ने थोड़ा टहलनो चाहिए ताकि उन्हें सु कही है कि शरीर है जो निरोग रहे।
0: बिल्कुल सा देखो जे सुबह की बेला है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर ने आपा निरोगो रहे।
1: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग उनरो शरीर रहे निरोग
0: निरोग। बिल्कुल सा देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है अगर बिने भी आपा कर लेवानी तो भी आप निरोग रहो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल दो तीन किलोमीटर घूम लियो तो और ही सोने में सुहागे की बात है सा।
1: तो भाई जितो करो नहीं आप शरीर ने दूरो भाई काम शू करो एक तो और एक अपना अगर योग रे माध्यम से बो जो दूरो को नहीं रहना होवे वो उल्टेरो जो कही है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग।
0: तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेला घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है बिया सलाह ले पर आपने योग करना है।
1: कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो है नी उन्होंने कोई न कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो।
0: देखो शरीर सु पसीनो निकलना चाहिए पसीने में मेहनत छुपेड़ी है
1: और मेहनत से ही देखो सा मिले धन।
0: बिल्कुल सा तो मुंडा बा बताओ योग रे साथे की आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा।
1: लोग बाग कागज या तो घणकरा लिखे है कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
0: देखो बर्ड फ्लू आयो है।
1: अच्छा
0: जी लिखी है मुर्गिया
1: रोक थामरा उपाय।
0: वाह वाह ठीक रस्तो बतायो आज विशेषज्ञ जी का पता नहीं नाम आपने बता दूं जहाँ पर चौपाल में पधारे है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे है सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने में करा।
1: राम राम सा
2: राम राम अरकू भाई राम राम बंसी भाई।
1: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नहीं अपना जगह पशुपालक भाई नहीं बे होशी प्रसन्न।
0: बिल्कुल
1: आभार पूछू सा तो से हूँ पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप बताओ कि मुर्गियां माए
2: मेनली तीन कारक हुआ करे चाहे मुर्गियां हो पशु हो पक्षी हो क्या तो वायरस हुए क्या बैक्टीरिया हुए क्या प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
1: जी।
2: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो
1: अच्छा।
2: पूरा वर्ल्ड पूरा राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है बर्ड फ्लू ला दो चार बार हुआ तो लाखों लाखों संख्या में अपन मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
1: जी।
2: दूसरो रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूत तीसरो फाउल पॉक्स है सेम विषय बारी बीमारी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस आप कैंसर हुए मनुष्य आदमी बस सेम रोग है ऐसा वायरस होने वाला है। दूसरा फाउल कोलेरा हुआ है फ्लोरम डिजीज है इकोलाई

0: जो चीचड़ है, टिक है, माइट है, कोक्सीडियोसिस है, एस्परजिलोसिस है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गियां में हुए।
1: वाह सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप, घनखरा रोग बताए, पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा। तो सब पहला डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि रानीखेत रोग का कारण लक्षण रोग
0: रानीखेत डिजीज। अगर रानीखेत नाम ही वास्ते पढ़ो कि रानीखेत एक जगह है उत्तराखंड में, तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई, आ बीमारी आई। अच्छा। इरो नाम रानीखेत भी जगह रे हिसाब रानीखेत डिजीज नाम पढ़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यूकैसल डिजीज भी कहवा। न्यूकैसल एक जगह है इंग्लैंड।

0: में। अच्छा। तो भारत में रानी खेत में आई, लेकिन सब पहले महामारी रूप बैठे न्यू केसल में आई। इन्हें दूसरो नाम न्यू केसल डिजीज भी हिसाब राखोड़ो है। तो इमें कहीं है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजा लेर बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके, टर्की में भी वितर हूँ समान रूप हुए। इरो कारक के एक मिक्सो वायरस हुआ करे भी वायरस री वजह आ हुए। इमें इरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए। पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानीखेत डिजीज भी कहे, आ बहुत खतरनाक है। इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी। और आ 3-4 दिन तक रहे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगड़ी मुर्गियां मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गियां ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए, मुंह खोल मुर्गियां भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, भी ने अमेरिकन टाइप किया करे, भी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा भी में दस्त हुए तो और अंडा उत्पादन में कमी, तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां भी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इनमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक भी, लक्षण दिखे कौन नहीं।
1: अच्छा।
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
1: अच्छा।
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है,
1: रोग है,
0: एसिम्टोमेटिक सिम्टम कौन आ रहा है, इमें भी में खांसी आवे उल्टी आवे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे तो अपन ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे बार टांगे ने बीच में माथो देर भी बैठ जावे, तो यू अपन ठा पड़े की आ एसिम्टोमेटिक रानी खेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फार्म में बतायो एशियन टाइप बीरो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फार्म रो थोड़ा उपचार है, ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए। अच्छा। ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर।
1: अच्छा।
0: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो काम चल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भाई आपने जी जानकारी आप दी उनासु आपने जगह पशुपालक भाई है वे लाभ उठासी। अब मैं बात करा डॉक्टर साहब एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं कि इनसु प्रभावित हुए परेशान हुए। आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनरा रोकथाम रा कई उपाय।
0: जी, बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो। इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, भी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले, अभी बहुत खतरनाक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानी खेतों बताई 100% मृत्यु निश्चित, इरो कोई उपचार नहीं है। इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े। और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ये रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे। अपने समझ नहीं आवे यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे कोनी, एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू, तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब स्त्राव शुरू हो जावे, तो ये सब लक्षण इमें हो जावे, इरो उपचार कोनी बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है, वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेर
2: बिल्कुल नुकसान हुए सर। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ हाँ कि गंभोरो रोग कई है और इरा उपचार और बचाव क्या कर सका।
0: गंभोरो रोग इरे साइंटिस्ट था एक, बारो नाम हो जूलियन गंभोरो, बे ई रोग ने शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी, तो बारे नाम वो गंभोरो रोग नाम पड़ियो, तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंभोरो। अब भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी में, दूसरी तीसरी में और चूजा में ज्यादा हुए, छोटी उम्र में सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह री उम्र में वो रोग हुए और 3 सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ भी में 3-6 सप्ताह की आयु में इमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी में प्रकट हुआ है। इमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जावे, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरों में पंख भी अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा।
2: अच्छा,
0: पंख उड़ने में चालने में भी बड़ी

0: तकलीफ हो, पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे, तो है आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास अपने नंबर है टोल फ्री बैठे बात करो, इरो इलाज है, पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है, बैठे भी आप संपर्क कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, चार वैक्सीन इरे वास्ते है। पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड, मतलब माइल्ड वैक्सीन लागू हुआ है, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुआ है, और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुआ है, लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुआ हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए, कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए, तो भी मैं हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुआ, ये चार तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सका।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नी, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे। तो अगलो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कहीं होया करे, और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हो, इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: चेचक आप नाम बताओ, पॉक्स, पॉक्स वायरस हूँ, वेरा नाम में आ रही होगी पॉक्स, तो पॉक्स वायरस है चेचक, जिमे छोटी छोटी पुणसिया, जो मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए, जो इमें मुर्गी में छोटी छोटी फुणसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुणसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुणसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे हो फाउल पॉक्स बीमारी है। इमें संपर्क भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी संपर्क में आवे तो भी हो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे परजीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब तीन तरह री हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलनो, अच्छा। दूसरी हुए मुख रूप, और तीसरी हुए आंखियारो रूप। चर्म रूप में कहीं हुए कि इमें कलंगी, कलंगी माथे, चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसिया चेचकरी, चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर, गुदा पर भी हो जावे, तो यहां में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा, एक दो दिन में पीला रंग में बदल जा, भी वहां पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुंह अंदर झिल्ली अंदर गला तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुए इरो चेचकरो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आंख रूप, इमें आंखियाओं पलकाओं स्त्राव शुरू हो जावे, सफेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे,
1: अच्छा।
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आंख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन, तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षीरी कौन रहे, ताप टेम्परेचर बिरो बढ़ जाए, बुखार टाइप हो जाए और उग्र रूप हो जावे, तो बस पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचाव उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन, अच्छा। बीमारी होने पहले वैक्सीनेशन आपने करना चाहिए, छह आठ सप्ताह की उम्र में इरो वैक्सीन लगे, अच्छा। वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
2: बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और अब जो वक्त है वंशी भाई वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल अर्कू भाई
2: है? सुना दू
1: एकदम साहब,
2: आपसे सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथामरा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुआरी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और मैं चाहे किण भी रूप पारे मायने हो या करे, बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षा रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप ईरो भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो ईरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आप ला रहा वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुआ, इसी जगह ले रहा हुआ। अच्छा। जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी
0: साफ
3: सुथरो हुए, तो ये सब चीजा ध्यान रखना पड़े। इमें अंदर घुसनों पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड फुट बाथ वगैरह आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊं बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी
0: बिल्कुल।

0: सा कुल मिलाकर साफ सफाई की जी भूमिका है वह महत्वपूर्ण है और चाहे आवन जावन रो जो भी वाहन है वो हो चाहे वह जठे भी पशु दड़बे में रहे बीदी हाँ। भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है
1: बीरो बीरो लीटर जो आप नीचे बिछड़ो हुआ है बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है साफ सफाई रो बिल्कुल।
0: पर अब एक डॉक्टर साहब आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गियां रोग से बचाव में किन भात सहायक रहे हुए
1: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजूवास में भी है और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर रही जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो चूजाऊ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े बीजू और ब्रॉयलर रो अंडा देवन री टाइम का ही आहार रहना चाहिए क्लाइमेट रे हिसाबू भी सर्दी गर्मी में थोड़ा बहुत बदलाव आहार में लाना चाहिए बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां वैक्सीन तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वहां भी संपर्क कर और एक प्रोटोकॉल रे तहत ही आहार देवा पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आहार इंसान मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए मुर्गिया ने एक साथ दो तीन महीना में एक साथ सारी मुर्गियां आपने बेच नयो लोट ले आना चाहिए लंबे टाइम तक मुर्गियां नहीं रखना थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम में एक साथ सब बेच दो वो तो ऑल आउट ऑल इन नियम है और वापस लाना तीन सप्ताह तक खाली रखो पहले सप्ताह में भी ने बीरो लीटर चेंज करो दूसरे सप्ताह में बीरी दीवारा ये सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर्जेंट साफ करो तीसरे सप्ताह में वहां पर कलर वलर कर तीन सप्ताह बाद में पाछो दूसरो लीटर लाना चाहिए तो ये सब भी ध्यान रखकर
0: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट ये बात अगर आप ध्यान रखा फिर तीन सप्ताह अपने डॉक्टर साहब बताए छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं और इन बातें अगर आप ध्यान रखता तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट पीसो जी को लगेड़ो नहीं बेरो अपने अच्छो भुगतान भी होता रहसी नी जन देखो बीमारी है बड़ी नुकसान दे हुआ करे
2: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है
0: हाँ
2: है और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके जो हो सजग
0: हाँ
2: और सजग आदमी जिका करे सवाल
0: हाँ
2: है तो देखो सर गौरव भाई है जो कागज में लिखकर भेजे सवाल गौरव भाई कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जगह तुरंत करना चाहिए जल्दी सु ताकि उन्होंने जगह मुर्गियां वे बचोड़ी रहे
0: बढ़िया सवाल है
1: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई इस सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब हो दे कि आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है बीकन तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपने कह रहे फोन नंबर पर पशु चिकित्सक रहना चाहिए तुरंत संपर्क करो आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ और अगर वो डॉक्टर साहब बटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल साथ हमारे बैठे ले जाओ दिखा दो लक्षण और जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो आप रे हिसाब कोई ट्रीटमेंट नहीं देना आप रे हिसाब ट्रीटमेंट दे तो गड़बड़ आगे और फैल सके वा बीमारी तो इसो काम नहीं करनो तो डॉक्टर साहब संपर्क कर और राजूवास टोल फ्री नंबर है 1880 62 24 वहां पर भी आप संपर्क कर सको और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो तो वहां में भी काफी बातें आप बतावा तो ध्यान रखे पशु भाई पशुपालक भाई और मुर्गी पालक तो काफी राहत मिलसी
2: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे मायने आवे कि भाई टोल फ्री नंबर है उन्हारे मायने कोई रात बरात भी फोन कर सका की
1: बिल्कुल यहाँ तो 24/7 है
2: अच्छा।
1: लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बैठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे
2: अच्छा।
1: फिर बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप में आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी 24/7 सेवा उपलब्ध है राजूवास री तरफ
0: घड़कर हमारा जगह पशुपालक भाई बहने काम में भी लेवे है ठीक है सर और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रहा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देना चाहो सा
1: बिल्कुल सा छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो भी यार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चाहिए पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु

0: पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है ठीक है सर। और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देवना चाहो सा।
1: बिल्कुल सर, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके, छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो बिहारे इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा, तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चीज है। पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है, तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी खान पान उसका न्यूट्रिशन, अभी आप पूछो पहले मैंने खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका रखो तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं, तो इसको काम ही नहीं पड़े बीमारी रो वो आप ध्यान रखो।
0: तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर अर्ज करूं खान पान है और स्वच्छता है, दूसरा है ऐसा कि आप समय समय पर टीकाकरण करा और समय समय पर आप डॉक्टर साहब से राय लेता रहा तो आप जो काम धंधा है वो अच्छो चाली और पशु भी आप रहा है वह भी स्वस्थ रहसी। और अब जो वक्त है वो इशारो कर रही है आज्ञा लेवण रो
2: और समय जी की कदर है और सम्मान है वो तो सगला ने करना ही चीज है।
0: बिल्कुल सर, तो भैया मैं आपने बता दू आज आप बातचीत करी मुर्गियारा प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर और आज आपने जानकारी देवण सारू पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आप चौपाल में पधारिया और पशुपालका ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति भीणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज निंदा काय किया बैठे हो?
5: काय करूं दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोर भी कौन।
4: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनिल सी पशुपालन से जुड़ी समाधान
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे धीरे बातें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे धीणी री बाता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 600।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम 102 और साथ ही 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो।

हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:05 और समय हो चुका है फिल्म संगीत का। श्रोताओं, संगीत वो जादू है जो दिल की हर धड़कन को सुरों से जोड़ देता है, और जब बात हो फिल्मी गीतों की तो हर गीत अपने साथ यादों, भावनाओं और किस्सों का एक पूरा संसार लेकर के आता है। मैं हूं आपकी मेजबान नीतू कुमावत और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जहां हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ चुनिंदा मधुर सदाबहार और दिल को छू लेने वाले वो मधुर से गीत। तो तैयार हो जाइए प्यार, दोस्ती, खुशी, उम्मीद और जिंदगी के खूबसूरत रंगों से सजे गीतों के इस सुरीले सफर के लिए, जिसे आप सुनेंगे FM 102 पर। तो चलिए सुनते हैं आज के इस सफर का पहला गीत। लता मंगेशकर, उदित नारायण की मधुर आवाज में। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम डर।

0: वाकई में कितना खूबसूरत सा गीत था। फिल्मी संगीत की यही तो खासियत होती है कि हर दौर में दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। अगला गीत सुनते हैं।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दोस्तों, फिल्म संगीत में गीतों का ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जो अपने मधुर संगीत के साथ में आज भी श्रोताओं की पसंद बन चुका है। मोहम्मद अजीज, साधना सरगम की मधुर आवाज में ये गीत सुनते हैं, फिल्म त्रिदेव।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। कहते हैं कि अच्छी फिल्म और अच्छा संगीत जो होता है वो समय की सीमाओं से परे होता है। सालों बीत जाते हैं लेकिन कुछ गीत हमेशा नए से लगते हैं, और उन नए गीतों के साथ में हम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। एक ऐसा गीत जो संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में हमेशा शामिल रहा है, तो चलिए सुनते हैं कौन सा गीत है वो।

दोस्तों, गीतों की सुरीली महफिल को अब यहीं पर विराम देने का समय आ चुका है। उम्मीद है कि आज के फिल्मी गीतों ने आपके दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया होगा। बस ये गीत हमेशा आपके जीवन में खुशियां यूं ही लेकर के आते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं नीतू कुमावत आपकी रेडियो दोस्त आपसे विदा लेती हूं। मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में नए गीतों के साथ। कब? चित्रपट संगीत में। ऐसे ही मिलेंगे आपको सदाबहार गीत रात्रि 8 बजे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड, जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल

0: के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में PhD और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले 1 साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है 1 साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए।

0: पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरबाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुँच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों, जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से

0: पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालूतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है, ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालूतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली में देश में 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भेला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूं बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगों ने देवेला। इनु नौकरी धंधा रा 15 लाख बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जतका देश भर माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 रखा जावेला।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बढ़ावनो और अन्न ने हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा में बोल रहा। वह कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवाणु अन्न

0: पात्र लोगों ताई पुगावन माए साफ कोई मजबूत हुई है। श्री जोशी कहो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत करीब 98.5% खाद्यान्न वितरण EPOS मशीना रे जरिए करियो जा रियो है। मंत्री कहो कि तकनीक अपात्र लोगों ने पिछाण माए मदद मिली है, जबकि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल आखा देश माए प्रवासी लोगों सारो अन्न मुहैया करावनो तय किनो है।
1: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ई साल भी हज यात्रा न घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल री हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाई ची मीटिंग पछे खबर नवीसा सके बातचीत कर रहा है। रिजिजू बतायो कि ई साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय री ओर दो इनाम दिया गया। वे बतायो कि सरकार आवता साल री हज यात्रा सारू नवी नीति रो ऐलान करेला। केंद्र सरकार चालू माली साल माए गांवाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़का बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहला रा तहत आ सड़का सारू 18,900 करोड़ रूपये उम्बत्ती रकम राखी जी है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए भी मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यों रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और ए कारखाना पूरा बूताऊ काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रबारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाड़ला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहका ने दे री जी।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत ही समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियां ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। ई फैसला नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपये रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ई रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी माए विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावन और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसाना खेती री कुल जमीन कमो कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष CR चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था।

रहो के इनो किसाना री आमदनी माई बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठे पानी रा लेवल माय सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माय अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी वे पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया काम माय स्थानीय और हलकर

0: आयो है। एजेंसी रे मुझे परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करण री कोशिशा ने करड़ायूं रोकी चावेला। एनटीए उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 14416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबर नवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा ने जानकारी दीनी। वह कहो कि आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावा टेम सर करावण सारू खास कोशिशा कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावा करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूं पहली आज जयपुर में मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम रखी जियो। इन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आरएसी रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो। वे लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित राखण रे बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनु चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूं पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा में प्रदेश रा उगनी हल्का में गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जबकि आतुणी हल्का में कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला में तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 ठौड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावा कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओ इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है किसान भाइयों के अपने कार्यक्रम चौपाल का। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंता जिला 12। यदि किसान कच्चा लहसुन बेचने के बजाय मूल्य वर्धित उत्पाद बनाकर ब्रांडिंग और अच्छी पैकेजिंग के साथ बेचते हैं तो उन्हें सामान्य बिक्री की तुलना में अधिक लाभ मिल सकता है। साथ ही उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ने से उचित समय पर बिक्री कर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, यदि आपके मन में लहसुन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, सरकारी योजनाओं या व्यवसाय शुरू करने से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK उद्यानिकी विभाग या खाद्य प्रसंस्करण विभाग से संपर्क करें। सही जानकारी और उचित प्रशिक्षण के साथ लहसुन प्रसंस्करण आपके लिए आय बढ़ाने का एक सफल माध्यम बन सकता है।
1: चौपाल कार्यक्रम सुनबावड़ा संदा किसान बेण भाया के तई संतोष बना की घनी घनी राम राम। किसान बेण भाया, जैसा कि आज गुरुवार छे और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम होवे छे और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय छे लसन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। किसान बेण भाई, जो भी ई विषय पर जानकारी पाबो छाओ छे या फोन करबो छाओ छे ई विषय से संबंधित कोई सवाल छे वाका मन में तो फोन कर सके छे और कार्यक्रम में ई विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने साथ स्टूडियो में उपस्थित छे डॉक्टर प्रवेश सिंह चौहान, DST परियोजना सहयोगी KVK अंता जिला 12। तो जो भी किसान बहन भाई विषय से संबंधित सवाल पूछबो चाहो छे तो कार्यक्रम में फोन कर सके छे। फोन नंबर छे 07449-29-4-11-42। दूसरी लाइन भी खुली हुई छे 07449-STD कोड लगावा और फोन नंबर छे 2-333-444। ये दोनों नंबर पर आप माँ कथाई फोन कर सको छो और विषय संबंधी सवाल पूछ सको छो। तो कार्यक्रम में सबसे पहली डॉक्टर साहब को स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में घनो घनो स्वागत है। राम राम।
2: राम राम सभी किसान भाइयों को, बहनों को और श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार।
1: बिल्कुल। अब जैसा कि आपनो विषय है डॉक्टर साहब लहसुन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन, तो आप जाना चाहे अपना हाड़ौती संभाग में लहसुन की खेती बहुत अच्छी मात्रा में हो वजह और किसान बहन भाई को भंडारण भी कर रखा है, जब बढ़िया भाव आवे तभी कदाई बेचे जाए। लेकिन अगर उचित भंडारण अगर करा तो उसे अपन लाभ ले सके चा। एक किसान साथी लाइन पर छ। हेलो, लागे छ फोन कट गयो, फिर बात करना यहाँ से। किसान बहन भाई, जो भी आप सवाल पूछबो चाहो छो फोन कर सको छो 07449-29-4-11-42 पर और एक और लाइन चालू छ STD कोड 07449-2-333-444। थोड़ा सा इंतजार करो कि भाई फोन आवा तो मैं उठाऊंगा जरूर। अब सबसे पहली आपन बात कर रहे चा डॉक्टर साहब के लहसुन को उचित भंडारण आपन कताई कसा करनी चाहिए ताकि वो लहसुन वहां को खराब न हो।
2: देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो जो लहसुन है वो अपने हाड़ौती क्षेत्र को ना लहसुन उत्पादक का कटोरा माना गया है कि सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र में ही लहसुन होता है। लहसुन आप सब लोग बहुत अच्छे से करते हो और बहुत समय से करते आ रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लहसुन होता है उसको ना आप जमीन में से निकालने के बाद है ना 2-3 दिन तक उसको खेत में ही रखें। खेत में रखने के बाद एक अपने ना घास फूस की जो झोपड़ी होती है, बांसों की जो झोपड़ी होती है उसमें रखें। उसके लिए ना उसे ना पत्तों समेत रखना है, उसके ना 5-6 गाठे बना बना के फूले बना बना के उसको वहां पर रखना है। थोड़ी सी जड़े हटा देनी है तो ये तो
1: मतलब पूछड़ा समेत रखना है। हाँ, और फिर 4-4, 5-5 बांधना,
2: बंडल्स बांध के उसको रखना है। दूसरा है कि ये तो अपन रख सकते हैं कि डायरेक्ट खेत में ऐसे लाने के बाद, लेकिन हमारा जो अभी आज का विषय है वो मूल्य संवर्धन पे है कि हमें लहसुन का किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। तो उसके लिए किस

0: किसान जो होता है वो खेती करता है पर उसको डायरेक्ट बाजार में बेचता है, उससे उसको इतना पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। मूल्य प्राप्त होता है उसके लिए हमें उसका प्रसंस्करण करना बहुत जरूरी है। प्रसंस्करण होता है कि उसका कोई ना कोई उत्पाद बनाना। अगर हम कोई ना कोई उत्पाद बनाएंगे तभी उससे हमें उचित मूल्य प्राप्त होगा।
1: हाँ, मुँह यही पूछबो छारी जी कि भाई किसान बेण मांगता है, अपन यही बताओ सबसे पहले कि भाई प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हो वकाई जा, या आप किसान बेण मांगता है बताओ
0: जी। प्रसंस्करण होता है कि हम खेत से जो उत्पाद लेके आते हैं, जैसे कि मैं दूसरे शब्दों में बताती हूँ, लहसुन के अलावा अगर आप है ना गेहूं खेत से लेके आ रहे हैं, गेहूं को हम सीधे ना बेच के हम आटे के रूप में बेचते हैं, आटा बना लें, मैदा बना लें या दलिया बना लें, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेसिंग हो गई है ना। इसी तरह से दूध, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, दूध को सीधे ना बेच के हम उसका पनीर बना लें, घी बना लें या मावा बना लें, उसको हम बेचते हैं तो हमें मूल्य अधिक मिलता है। इसी तरह से लहसुन को हम सीधे ना बाजार में बेच के हम उसका लहसुन का पेस्ट बना लें, उसके फ्लेक्स बना लें, उसकी चटनी, अचार और विभिन्न तरीके के उत्पाद बनते हैं, वो बनाकर हम उसे बेच सकते हैं, तो जिससे हमें उसका मूल्य अधिक मिल सकता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा यो प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन जो आपनो विषय छे, ये दुनिया में काय अंतर छे?
0: प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग तो होता है कि उस उत्पाद का हम प्रक्रिया करते हैं, उसको हम बनाते हैं, और मूल्य संवर्धन होता है कि उसके हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब वैल्यू एडिशन। मूल्य संवर्धन होता है वैल्यू एडिशन, किसी भी चीज का हमें मूल्य बनाना। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि दूध अगर जा रहा है 60 रुपए लीटर जा रहा है दूध, तो मावा कितने रुपए लीटर जा रहा है, है ना, और घी कितने रुपए लीटर जा रहा है, तो उसका हमने
1: पनीर मक्खन डबल रेट में जा रहा है,
0: तो दूध से अधिक मात्रा में जा रहा है। उसी तरह से अगर हम लहसुन,
1: एक किसान साथी लाइन पर,
0: बिल्कुल।
1: राम राम।
2: राम राम।
1: हाँ, कौन बोल रहे जो?
2: चौपाल कार्यक्रम सुन रहा था मैंने।
1: हाँ,
2: एक सवाल था, वो कही के उतरे वो सब्जी बेचा था ना पा, उनको सवाल बताओ।
1: सब्जी बेचे छा, काई सवाल छे? आज को विषय छे लसन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। लसन से काई काई चीजा अपन बना सके जा और कसा बना कर के बेच सके जा,
2: तो ये सवाल बताओ ना।
1: क्या?
2: लसनों का काई काई चीज बना सके जा,
1: लसन से काई काई बना सके जा। हाँ डॉक्टर साहब, लसन से काई काई उत्पाद बनाया जा सके जा। कौन बोल रहा है जो, पहले नाम बताओ।
2: मैं बोल रहा था वर्षा जी।
1: वर्षा जी कहाँ से बोल रहे हो?
2: मैं टोंक जिला पास देवली से बोल रहा था।
1: अच्छा, ठीक जा डॉक्टर साहब।
0: हाँ जी वर्षा जी, अगर आप इच्छुक हैं कि अगर लहसुन से आप उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन से पाउडर बनता है, लहसुन पाउडर जिसे कहते हैं, ठीक है। एक लहसुन से लहसुन फ्लेक्स बनता है। फ्लेक्स होता है कि लहसुन को पतले पतले पीसेस में काट के उसको ड्राई कर लेते हैं, हम सुखा लेते हैं। एक लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है,
1: जो मसाला वगैरह
0: जी
1: सब्जी में
0: जो मसाला और सब्जियों में यूज आता है। एक लहसुन का अचार बनता है और लहसुन की चटनी बनती है। लहसुन नमक का मिश्रण भी बनता है, जिसे हमें स्प्रिंग के रूप में स्वाद बढ़ाने के लिए काम लेते हैं। और एक हम लहसुन का तेल बनाते हैं। तो ये उत्पाद हम लहसुन से बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, हाँ ठीक जा, आपकी समस्या को समाधान हो गयो, ये चीजें अपन बना सका जा। हेलो,
2: कॉल कट गयो तो।
1: हाँ,
2: इसलिए डॉक्टर साहब वो जानकारी
1: तो आप रेडियो पर न सुनी,
2: वो रेडियो पर न कहो तो न सुनी थी मैं।
1: अच्छा चलो डॉक्टर साहब फिर से बता रहे थे कि काय काय बना सके जा।
2: हाँ वो कट गयो था ना कॉल, इसलिए
0: ठीक है मैं आपको है ना वापिस बताती हूँ कि आप लहसुन से क्या क्या बना सकते हैं।
2: बताइए।
0: आप लहसुन का पाउडर बना सकते हैं। लहसुन पाउडर हमें ड्राई रूप में होता है, सूखे हुए रूप में होता है, उसको हम कहीं

0: भी रेस्टोरेंट में, बाजार में इसको हम सेल करते हैं, और ये हमें डायरेक्ट सब्जी में यूज करने के काम आता है। ठीक है, हम लहसुन का अचार बनाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, लहसुन के फ्लेक्स बनाते हैं जो स्लाइसेस काटते हैं, जो हमें गार्लिक ब्रेड वगैरह में यूज आता है उसे बनाते हैं, और लहसुन नमक बनाते हैं, जो लहसुन और नमक का मिश्रण होता है वो बनाते हैं, और लहसुन तेल बनाते हैं जो औषधि के रूप में काम आता है हमें।
1: ठीक जा, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप मूल्य संवर्धन की बात कर रहे अच्छा, कि मूल्य संवर्धन का काई लाभ हो जाए और ये क्यों आवश्यक हो जाए?
0: मूल्य संवर्धन से यही है कि हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें वो मूल्य नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मूल्य जो होते हैं वो
1: कभी कभी तो भाव बहुत ज्यादा गिर जाओ चल
0: जाते हैं। हाँ, और मूल्य हमेशा कौन लोग उठाते हैं? जो कंपनी वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, और ये सब ये मूल्य बना लेते हैं। जैसे कि हमें आपने देखा होगा कि जो सब्जी में जो एक टमाटर है, टमाटर भी हम लगाते हैं, और कई बार क्या होता है कि किसान को वो टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ता है। अगर किसान उसका थोड़ी सी मेहनत करके मूल्य को बढ़ा दे, मूल्य संवर्धन कर दे, चाहे उससे टमाटर सॉस बना ले, टमाटर केचप बना ले, तो उससे क्या होगा कि उसके वो प्रोडक्ट फेंकना भी नहीं पड़ेगा और वो बाजार में बिकेगा, जिससे क्या होगा उसको अधिक मुनाफा मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से गार्लिक के साथ है कि गार्लिक का भी आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब जैसा अपन लहसुन का जो उत्पाद बना रहा था डॉक्टर साहब आपने बताई
0: जी,
1: तो लहसुन की जो गुणवत्ता है वो कता बनाया रखबा के लिए आपन कता कसी कसी सावधानियां रखनी चाहिए जा?
0: देखो थोड़ा तो असर पड़ता ही है कि जो थोड़े से जो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू बने रहते हैं, पर उसके लिए हमें ना थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए।
1: हाँ।
0: जैसे कि हम लोग उनके पेस्ट बना रहे हैं लहसुन का या जूस बना रहे हैं, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम सुखा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा विटामिन सी खत्म हो सकता है, पर उसके अंदर जो लाभकारी तत्व रहते हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो इसी तरह से उसे साफ करके, साफ सुथरा करके, सूखे बर्तन में बनाएं, है ना, उसे छाया में सुखाएं, तो उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की नाश नहीं होगा।
1: एक और किसान साथी लाइन पर चा, राम राम साहब।
2: राम राम,
1: कहाँ से कौन बोल रहा? जो
2: मैं बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से?
2: बलिया से, बूंदी।
1: बूंदी से?
2: हाँ।
1: कौन बोल रहा है? नाम बताओ। अच्छा, काई सवाल चा आपको?
2: मैं से पूछ रहा था कि मतलब हमारे तो मतलब बेस्ट किस्म में खड़े हो, अच्छी किस्म लहसुन की,
1: लहसुन की अच्छी किस्म?
2: हाँ।
1: अच्छा, अच्छी किस्म बता दो लहसुन की, कैसी होगी? हाँ डॉक्टर साहब।
0: हाँ जी बिल्कुल, देखिए लहसुन का अगर हमें ना उत्पाद बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किस्म भी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए किसान प्रिफर कर सकता है यमुना सफेद 3, जिसको हम G282 भी कहते हैं, एग्रीफाउंड पार्वती जिसे हम G313 कहते हैं, यमुना सफेद 1 G1 कहते हैं, और ऊटी नंबर 1। तो ये किस्में हम इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। हाँ, ये तो हुई अच्छी किस्मा था कि अच्छे से प्रोसेसिंग अपन कर सका, अच्छा उत्पादन अपन ले सका, ये किस्मा है। अब जैसा आपन ने कोई उत्पाद बना लियो डॉक्टर साहब, काई भी जैसा आपने की लहसुन का अपन सारा उत्पाद बना सका चाह, तो पैकेजिंग और मार्केटिंग कसा करा
0: जी? देखिए उत्पाद बनाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है मार्केटिंग की, कि किसान जो सबसे ज्यादा हिचकता है उत्पाद बनाने के लिए।
1: आप कहते हैं थोड़े से रोक बचाऊंगे, किसान साथी लाइन पर जा। राम राम साहब। राम राम। हाँ राम राम।
3: राम राम साहब,
1: कौन बोल रहा जो?
3: मैं खुलना से बोल रहा हूँ।
1: नाम का है जा?
3: द्वारिकालाल।
1: द्वारिकालाल जी। हाँ, सवाल पूछो।
3: धान की किसी किस्म कैसी आ रही से?
1: धान की?
3: हाँ, कैसी आ रही है?
1: पर आज तो आपनो विषय दूसरो छे।

0: આપણો વિષય છે લસણ કી પ્રોસેસિંગ યાની પ્રસંસ્કરણ ઓર મૂલ્ય સંવર્ધન કશા કરા. એ પર કોઈ સવાલ હો તો પૂછ શકો છો આપ. અચ્છા, તો આપ તો આજ કા વિષય સે સંબંધિત સવાલ પૂછો. કઈ વિષય સે સંબંધિત કોઈ સવાલ આપકો?
1: ના ના, કોઈ નો.
0: કાર્યક્રમ માં ફોન કર્યો એટલે બહુ બહુ ધન્યવાદ. હા, માર્કેટિંગ કી બાત કર રહે છે
2: આપ. તો આપને અભી પેકેજિંગ ઓર માર્કેટિંગ કી બાત કીતી વિપણન કી.
0: તો એક કિસાન સાથે ઓર લાઈન
2: પર. જી બિલકુલ.
0: રામ રામ.
3: જી રામ રામ.
0: કોણ બોલ રહ્યા છો?
3: મેરા નામ મેઘાલી હે.
0: જી.
3: ઓર મેં થોડા સા મેમ થી સવાલ પૂછના ચાહતી થી કી जैसे भी मैम ने बताया कि लहसुन की बहुत सारी चीजें होती हैं जो बन सकती है, तो लहसुन का जो तेल है जो भी बताया,
0: हाँ,
3: तो वो कैसे बन सकता है?
0: बिल्कुल, तेल कसा बना सका जापन?
2: जी मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना लहसुन का तेल कैसे बनाते हैं. लहसुन की जो कलियां हैं उनको निकाल लीजिए, छील लीजिए मतलब, फिर उसको हम सरसों के तेल में, सरसों के तेल में उसको हम डाल के उसको भाप से गर्म करते हैं, मतलब सीधे ना वो कहते हैं अग्नि के संपर्क में नहीं आना चाहिए. तेल को किसी बाउल में लेके उसको गर्म पानी में रखकर तब उसको धीरे धीरे उसको बॉईल करो, तो उसका क्या होता है वो अर्क है ना तेल में निकल जाता है, तो उसको कहते हैं हम लहसुन का तेल. तो उसे आप यूज करेंगे तो वो हमारे एक औषधीय उपयोग के लिए है.
0: अच्छा, भाप में सेकनो छे मतलब लहसुन? सरसों का तेल में
2: कि गरम, जैसे पतीले में हम पानी गरम करते हैं, उसके अंदर हमें कटोरी तेल की रखनी है और फिर उसके अंदर लहसुन डालना है, तो वो धीरे धीरे बाउल होगा, सीधे होगा तो वो जल जाएगा लहसुन.
0: अच्छा,
2: तो उसके वो औषधीय तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे सीधे.
0: अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से अपन तेल बना सकते हैं लहसुन को. ठीक है, आपकी समस्या को समाधान हो गया?
3: हाँ जी बिल्कुल. तो उसको कितने समय तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं?
0: कितना समय तक तेल चल जाओ?
2: आप कितना तेल बनाना चाहेंगे उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा.
3: अच्छा अच्छा अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू.
0: मतलब एक महीना दो महीना यो पूछ बुझा रहे थे, कितना समय तक तेल चाल जाओ अगर आपन बनाऊंगा तो, मतलब खराब कब तक ना होगा?
2: हाँ वो खराब नहीं होगा, आप है ना 5-6 महीने तक, साल भर तक आराम से यूज कर सकते हैं.
3: ठीक है ठीक है
0: ठीक है. कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद.
0: हाँ, मार्केटिंग की बात आपन कर रहे थे.
2: जी बिल्कुल. मार्केटिंग के लिए हमें सबसे पहले तो पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए. पैकेजिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. पैकेजिंग क्या होता है कि ना वो उत्पाद, जो भी हम उत्पाद बनाएंगे उसको क्या रखती है, सुरक्षित रखती है. पैकेजिंग हमें आकर्षित बनानी चाहिए. कई बार होता है कि हम लोग है ना बड़ी पैकेजिंग बना लें पर ग्राहक छोटी पैकेजिंग ले, तो हमें अलग अलग पैकेज बनानी चाहिए. जैसे कि आजकल आप मार्केट में देखते होंगे कि पाउच पाउच में आते हैं, छोटी बोतलों में आते हैं और बड़ी बोतलों में, तो हमें 3-4 प्रकार की पैकेजिंग अलग अलग रखनी चाहिए. ठीक है, और जिससे क्या होता है कि अगर आकर्षित पैकेजिंग होगी तो मूल्य भी उससे हम बढ़ता है. ठीक है, उस पैकेजिंग के ऊपर हमें उत्पाद का नाम लिखना चाहिए, क्या क्या सामग्री ली वो लिखना चाहिए, उसका कितना वजन है वो, और कब हमने वो बनाया उसकी तिथि लिखनी चाहिए, तारीख है ना, और कब वो अंतिम तिथि कि हम उसको कब, जिसे कि हम देखते हैं एक्सपायरी डेट, वो भी लिखना चाहिए. बैच नंबर लिखना चाहिए. उद्योग कर रहे हैं तो हमें ना एक FSSI लाइसेंस नंबर लेते हैं, तो वो भी हमें उस पे वो लिखना होता है. ठीक है, और निर्माता का नाम या कोई कंपनी या कोई समूह जिसके द्वारा हम बना रहे हैं उसका नाम होता है. ठीक है, फिर
0: इकले कोई लाइसेंस लेवा की भी जरूरत पड़े छे?
2: हाँ जी बिल्कुल, लाइसेंस होता है कि एक FSSI नंबर होता है जो हमें लेना होता है. FSSI संस्था होती है जो हमें खाद्य पदार्थों के लिए वो देती है.
0: अच्छा,
2: परमिशन देती है कि ये एक FSSI नंबर होता है, जिससे क्या होता है कि अगर भविष्य में कोई भूल चूक हो जाए तो वो उससे हम बच सके. तो उससे क्या होता है कि जितने भी खाद्य पदार्थों का होता है हमें FSSI नंबर लेना होता है, उसकी हमारे प्रोडक्ट की जांच होती है, उसके बाद हमें परमिशन मिलती है कि हम इस को बेच सकें.
0: बिल्कुल. अब जैसा कि आपन जाना है डॉक्टर साहब, किसान बहन भाई तो खेती करे ही.

0: साथ ही साथ महिला भी बराबर की भागीदारी रहे, बराबर की खेती करे, बल्कि मोट ज्यादा ही काम करे, तो महिला भी ई व्यवसाय से जुड़ सके और कसा जुड़नी चाहिए जो वहां वो प्रसंस्करण और ये यहाँ से कसा जुड़ सके।
1: जी हमारे जो महिलाएं हैं वो खेती में उनका बहुत योगदान है, तो महिलाएं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि ये एक गृह कार्य की तरह भी है और गृह कार्य में कहते हैं कि महिलाएं बहुत दक्ष रहती हैं, तो इसको वो कर सकती हैं। पर क्या है कि ये अकेले करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, तो एक हम SHG स्वयं सहायता समूह, मतलब कि महिलाएं आपस में 10-12 महिलाओं का एक समूह बनाए जिसको हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह, तो जिसपे क्या होता है कि उनको लोन भी उपलब्ध होता है।
0: अच्छा,
1: है ना, उससे वो काम स्टार्ट कर सकती हैं। शुरू में वो गृह उद्योग के रूप में उस काम को करें तो ये वो एक सफल स्वरोजगार अपना बना सकती हैं।
0: मतलब वो गठन करके दो चार बहना मिलकर,
1: हाँ,
0: लसन तो हो वही तो वहाँ की कलियां छील करके पाउडर बना सके उत्पाद, तो कले ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती होगी वहाँ।
1: हाँ जी, इसके लिए अगर जैसे महिलाओं को ये काम आता है और वो अपने घर पे ये काम करती रहती हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पे काम करना और एक उद्योग के लिए काम करना उसमें बहुत सारी तकनीकों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए अगर हम अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र या किसी एग्रीकल्चर संस्थान से अगर कोई प्रशिक्षण ले लें तो वो अच्छा रहता है कि जिससे हमारा अच्छे से उद्योग चल सके।
0: हाँ बिल्कुल, उमें सारी जानकारी आपन कता मिल जाओ जे। अब जैसा आपनी बेणिया करी छे काम, तो वहां कता एक तरह से घर बैठे बैठे वहां का आमदनी भी हो जाओगी, लसन तो वो करी छे तो आमदनी को बढ़िया स्त्रोत हो जाओगो। अच्छा, अब यह छे बात के भाई आपन जो लसन उत्पाद करे छे तो इसकी सेल्फ लाइफ कतनी हो जे?
1: देखो, लहसुन की सेल्फ लाइफ, अगर हम लहसुन को अच्छे से सुखा के पोंछ के उसके पैकेट को भी सुखा के ध्यान रखे कि इसमें कोई नमी ना हो, ये पूरा ध्यान रखेंगे हम पूरे पैरामीटर्स का, तो इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने से 1 साल भर तक की इसकी सेल्फ लाइफ होती है। और हमें जहां तक कोशिश हो तो एक सिद्धांत है उसका वो करना चाहिए कि हमें जो पहला उत्पाद बनाया उसको पहले हमें बेचना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे और उत्पाद बनाने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो उत्पाद एक्सपायर हो जाए और फिर हम उसे निकाले ना।
0: बिल्कुल, जैसा महिलाएं ताई जुड़वा की बात कीजिए कि भाई महिलाएं ये व्यवसाय से जुड़ सके जाए। आजकल आपने देखा चाहे कि शहर में तो सभी महिलाएं काम काजी रह जाए तो वहां का टाइम न रहे कि लसन को मसालो बना हुआ या अचार बना हुआ, तो अगर आप लसन को पेस्ट अचार वगैरह बना कर बेच सके जा तो दोनों को काम आसान हो जाओगो,
1: माताएं
0: लाभ भी हो जाओगो, अठी कामकाजी महिलाओं का भी फायदा हो जाओगो।
1: बिल्कुल, आजकल जैसे कि है ना सभी कामकाजी हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो आज इतना समय नहीं है गृहणियों के पास कि वो लहसुन को छीले फिर जाके वो सब्जी बनाए या पेस्ट बनाए, तो आजकल रेडी टू कुक आता है, मतलब कि सब कुछ पैकेट्स में रेडी आता है और उसको वो खोल के वो सब्जी बना लेती हैं, तो जिससे क्या होता है कि इससे ना जो औद्योगिक महिलाएं जो उद्योग करना उनके लिए भी आसान है, उनके लिए भी अच्छा है, और जो अपने उपयोग में ले रही हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि जल्दी से काम निपट जाता है।
0: बिल्कुल, अब जैसा कोई किसान बहन भाई ये प्रोसेसिंग काम कर बुझाओ जो मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण कर बुझाओ जो, तो उकले वहां कताई कसी मशीना उपकरणों को उपयोग करनी पड़ोगो, काई करनी पड़ोगो कि वो एक जैसा कोई किसान युवा किसान जो उद्योग लगा वो स्थापित कर बुझाओ जी को तो वो काई करा?
1: जी बिल्कुल, पहले तो अगर छोटे स्तर पे अगर महिलाएं मिलकर काम करना चाहती हैं तो वो बिना मशीनों के भी काम कर सकती हैं, उसमें क्या कि काटना छीलना पीसना तो वो अपने घर के स्तर पे भी कर सकती हैं, पर इसे थोड़ा सा आप उद्योग के रूप में बड़े स्तर पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ मशीनें लेनी पड़ती हैं, तो जैसे है लहसुन बल्ब ब्रेकर, पीलिंग मशीन, स्लाइसर, ट्रे ड्रायर या सोलर ड्रायर, ग्राइंडर, पावर राइजर, मिक्सर, पेस्ट बनाने की मशीन और पैकिंग मशीन और उसको सीलिंग मशीन, है ना, और वेइंग मशीन, ये सब मशीनें हमें लेनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल, एक छोटा सा अंतराल के लिए रुकूंगा, फिर वापस से कार्यक्रम में शामिल होऊंगा।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?

0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अब अगर आपन कोई उद्योग लगा बुझाओ, जैसा कि आपने बताया कि लहसुन को आपन कोई उद्योग स्थापित कर बुझाओ प्रोसेसिंग को, तो इकले सरकार द्वारा भी कोई सहायता मिला छे का?
2: जी, सरकार तो आजकल उद्योग को बहुत महत्व दे रही है। जैसे कि अभी अपने एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, उसमें भी सरकार बहुत सहायता देती है। कृषि अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विज्ञान द्वारा भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो वो भी आपको सहायता मिलती है। नाबार्ड के द्वारा भी आपको सहायता मिलती है, उससे लोन वगैरह भी मिलता है। तो ये सरकार की विभिन्न स्कीम्स हैं, तो उससे भी जुड़ के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो कोई छोटा किसान अगर कम लागत में प्रोसेसिंग इकाइयां लगा बुझा हो, तो कसी कसी इकाई वो लगा सकते हैं?
2: जी, जैसे कि कटाई की, छटाई की, है ना, कलियों को अलग करने की, छिलके उतारने की, इनकी मशीनें वो लगाकर आराम से अचार बना सकता है, है ना। स्लाइस काट के वो सोलर पैनल पे वो सोलर ड्रायर पे वो सुखा सकता है। पेस्ट बनाने के लिए ग्राइंडर चाहिए तो वो पेस्ट बना सकता है। गार्लिक पेस्ट, गार्लिक लहसुन का जो पेस्ट बनता है, ठीक है, और ऑयल बना सकता है गार्लिक का, ठीक है, और लहसुन का अचार बना सकता है, लहसुन की चटनी बना सकता है। तो वो ये छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकता है।
1: बिल्कुल। अब जैसा कि कार्यक्रम को समय भी हो रहे हो, तो आप अंत में किसान बहन भाइयों के ताई काई संदेश दे बो छाओगा कि लहसुन की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन का बारा में वहां के ताई काई बता बो छाओगा तो वो इस तरह का काम कर और आगे बढ़ और आय में वृद्धि कर, किसानान की आय कसा बढ़ सके जय में?
2: सॉरी, यदि किसान कच्चा लहसुन बेचने के बजाय उसको मूल्य वर्धन करके उत्पाद बनाकर उसकी एक अच्छी ब्रांडिंग बनाकर एक अच्छे से पैकेज करके उसको सही समय पे दुकानों पे बेचता है, तो उसको अच्छा से अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। बेचने के लिए हमें ना कोई रिटेल जो दुकान होती है वो ले सकते हैं, और ये स्थानीय बाजार ले सकते हैं, किराने की दुकान ले सकते हैं, सुपरमार्केट में हम इसको सेल कर सकते हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं,
1: ऑनलाइन मार्केटिंग
2: कर सकते हैं। एक किसान उत्पादक संगठन है, हम उसमें इसको बेच सकते हैं, उसमें हम देके हम किसानों तक पहुंच सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें, और कृषि के द्वारा कई मेले लगते हैं, स्टॉल्स लगती हैं, तो उसमें आप इसको ले जा सकते हैं।
1: बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर प्रवेश सिंह चौहान, DST परियोजना सहयोगी, KVK अंता, जिला 12, आप कार्यक्रम में पधारे और किसान बहन भाइयों के तहत बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान बहन भाइयों के तहत भी बहुत बहुत धन्यवाद, वहां कार्यक्रम में भाग लियो। और अब समय हो रहे, फिर मिलेंगा नई नई बातों और मीठा मीठा गीतों के साथ। अब कार्यक्रम मैं आज्ञा चाहूंगा, राम राम।
2: राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: यदि किसान कच्चा लहसुन बेचने के बजाय मूल्य वर्धित उत्पाद बनाकर ब्रांडिंग और अच्छी पैकेजिंग के साथ बेचते हैं, तो उन्हें सामान्य बिक्री की तुलना में अधिक लाभ मिल सकता है। साथ ही उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ने से उचित समय पर बिक्री कर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, यदि आपके मन में लहसुन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, सरकारी योजनाओं या व्यवसाय शुरू करने से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK उद्यानिकी विभाग या खाद्य प्रसंस्करण विभाग से संपर्क करें। सही जानकारी और उचित प्रशिक्षण के साथ लहसुन प्रसंस्करण आपके लिए आय बढ़ाने का एक सफल माध्यम बन सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि विज्ञान केंद्र अंता, जिला 12।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।

FM 102 और साथ 103.6 MHz मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हवाओं की सरगम, रंग बिरंगे परिधानों की छटा और लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर, यही तो पहचान होती है ना हमारे राजस्थान की। वाकई में राजस्थान का लोक संगीत, जहाँ पर मिलती है हमें मिट्टी की खुशबू। सुनते हैं इस सफर का आखिरी लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य खजाना है। राजस्थान की धरती पर जन्मे ये गीत और धुनें सदियों से हमारी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। वाकई में आज के ये जो लोकगीत थे, हमें आशा है आपको जरूर पसंद आए होंगे। लोक संगीत के ऐसे ही सुरमई सफर में हम मिलते रहेंगे। नमस्कार, हम मां घणी सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं।

नमस्कार, आप सभी को। संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है, और जब बात फिल्मी गीतों की हो या फिल्म संगीत की हो तो हर धुन के साथ कोई ना कोई याद, कोई एहसास और कोई कहानी जुड़ ही जाती है। जी हाँ, आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं बॉलीवुड के सदाबहार नगमे, मधुर गीत और दिल को छू लेने वाली वो धुनें जिन्होंने वर्षों से श्रोताओं के यानी कि आपके दिलों पर राज किया है। तो चलिए तैयार हो जाइए सुरों की इस दुनिया में हो जाने के लिए, जहाँ कभी प्यार मुस्कुराता है तो कभी यादें गुनगुनाती है और कभी जिंदगी खुद एक गीत बन जाती है। मोहम्मद अजीज, साधना सरगम की मधुर आवाज में सुनते हैं ये गीत।

102 और साथ ही 103.6 MHz यानी कि कोटा के चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत में आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत को। जी हाँ श्रोताओं, फिल्में जो होती है ना वो केवल पर्दे पर चलने वाली कहानी नहीं होती, बल्कि उनके गीत हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं। कभी सफर में वो साथ साथ चलते हैं तो कभी यादों को ताजा करते हैं और कभी दिल की अनकही बातों को आवाज दे देते हैं। सुनते हैं एक ऐसी ही मधुर आवाज को, अलका याग्निक और कुमार सानू को।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

वाकई में दोस्तों फिल्म संगीत की सबसे बड़ी खूबी ही होती है कि यह हर दिल की आवाज बन जाती है। शब्द किसी गीतकार के होते हैं, धुन किसी संगीतकार की होती है, लेकिन एहसास हर श्रोता अपने दिल से जोड़ लेता है। सुनते हैं अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की मधुर आवाजों में। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। फिल्म धड़कन।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये सफर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और बने हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ। वाकई में फिल्म संगीत का सफर जितना सुरीला है उतना भी यादगार है। 90s के दशक की वो मधुर धुनों से लेकर के आज के जोशीले और आधुनिक यानी कि मॉडर्न गीत, बॉलीवुड संगीत ने हर पीढ़ी के दिलों में अपनी कुछ खास जगह बनाई है। कभी कुमार सानू, कभी उदित नारायण, वाकई में इन सभी की आवाजों ने दिलों को छुआ है। तो आज के दौर में नए कलाकार और नई धुनों ने संगीत को एक नया आयाम दिया। ऐसा ही एक मधुर संगीत जो आपके दिलों पर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना चुका है। सुनते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण की मधुर आवाज में ये गीत।

बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दिल तो पागल है, दिल दीवाना ही है। जब इन शब्दों का साथ सुरों को मिलता है तब बनते हैं एक खूबसूरत से गीत, और यही गीत हमारी खुशियों, सपनों और यादों का हिस्सा बन जाते हैं। संगीत की दुनिया में फिल्मी गीत एक ऐसा इंद्रधनुष यानी कि एक रेनबो कहें, जिसमें प्रेम भी होता है, दोस्ती भी होती है, उत्साह भी होता है और उम्मीद के वो हर रंग दिखाई देते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं अगला रंग।

90 का वो दशक फिल्मी संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता था। उस समय के गीत आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह को बनाए हुए हैं। वाकई में उनकी सादगी और मधुरता आज भी दिल को सुकून देती है। ऐसे ही सुनते हैं सुकून देने वाला ये गीत फिल्म डुप्लीकेट, मधुर आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, सुरों से सजी इस खूबसूरत महफिल को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज के गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी इस फिल्म संगीत के सफर को खुशनुमा बनाया होगा। इसी के साथ मैं नीतू कुमावत आपसे अनुमति चाहती हूँ। इसी वादे के साथ मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और संगीत से अपने रिश्ते को जरूर बनाए रखिए। और हाँ, रात्रि 9 बजे हम फिर से मिलेंगे फिल्म संगीत के उस सफर में जिसमें बातें बातें होंगी। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।
1: वाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत

0: को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for finance, inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए

0: सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय

0: ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोतों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत बातों बातों में।

आकाशवाणी के इस खूबसूरत और सुरीले कार्यक्रम बातों बातों में मैं नीतू कुमावत आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी भी ना कितनी दिलचस्प है। कभी हंसते हंसते कोई याद आ जाता है तो कभी यूं ही बातों बातों में कोई पुराना किस्सा याद आ जाता है। और जब इन बातों का साथ मिल जाए पुराने फिल्मी गीतों में तो महफिल और भी जमा हो जाती है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम यानी कि बातों बातों में हम चले यादों की उस पगडंडी पर जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है जिंदगी का कोई खूबसूरत एहसास। तो ढूंढते हैं अलग अलग कहानियों में अलग अलग किरदार। शुरुआत करते हैं आज के पहले सदाबहार गीत के साथ।

वाकई में पुराने गीतों की यही तो खूबी है, जैसे ही धुन कानों में आती है मन बरसों पीछे चला जाता है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में चुपचाप आते हैं और फिर हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। बरसों बाद भी उनका जिक्र आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन्हीं खूबसूरत रिश्तों और यादों को लेकर के सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं बातों बातों में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर बिना प्लानिंग यानी कि बिना योजना के होती है। कोई मुलाकात, कोई दोस्ती, कोई सफर या फिर कोई गीत। पुरानी फिल्में गीतों में भी जिंदगी की यही सादगी और सच्चाई झलकती है और यही वजह है कि समय बदलने के बाद में भी इतना आकर्षण कम नहीं होता। सुनते हैं अगला गीत आप सभी के साथ।

चाय की प्याली हो और साथ में पुराने गीत हो तो शाम अपने आप खूबसूरत हो जाती है। फिल्मी गीतों का स्वर्णिम दौर हमें ऐसे अनमोल नगमे दे गया जो आज भी दिलों को उसी तरह छूते हैं जैसे वर्षों पहले छुआ करते थे।

कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा गीत सुन करके हमें ऐसा लगता है कि कुछ पल ठहर जाए। और वाकई में एक अच्छा गीत हमें कुछ पल ठहरना सिखाता है, खुद से मिलने का मौका देता है, खुद से बात करवाता है। सुनते हैं एक ऐसा गीत जो दिल को सुकून देगा।

इश्क, प्यार और मोहब्बत एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद कभी संभव ही नहीं हुआ, लेकिन हमारे गीतकारों और संगीतकारों ने इसे सुरों में इस खूबसूरती से पिरोया कि उसे हर दिल ने अपना बना लिया। सुनते हैं प्रेम की रंगों से सजा एक और सदाबहार नगमा।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं बातों बातों में। आज हम गीतों के बहाने यादों, रिश्तों और जिंदगी की वो छोटी छोटी खुशियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार गीतों की। सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की मधुर आवाज में फिल्म गाइड से ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है SD बर्मन का।

बातों बातों में आप बने हुए अपनी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। उनकी धुनों में छुपी हुई भावनाएं सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है। जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही है, फिल्म की तरह। हर दिन एक नया दृश्य होता है, नया मोड़ होता है, और उस हर नए मोड़ पर एक नई कहानी, और उस हर कहानी में कहीं ना कहीं कोई गीत छुपा होता है और कोई गीत जुड़ा भी होता है।

गीत हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक मुस्कान, एक मुलाकात, एक याद और एक गीत। इन्हीं बातों में सुनते हैं अगला गीत, फिल्म इज्जत।

दोस्तों आपसे एक सवाल पूछें, आपको क्या वो अपना पहला रेडियो याद है? वो दौर जब परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य एक साथ मिलकर के बैठ कर के रेडियो पर गीत सुना करते थे। कोई अपनी पसंद का गीत सुनने की प्रतीक्षा करता था, यानी कि इंतजार करता था, तो कोई हम जैसे उद्घोषकों की आवाज का दीवाना होता था। देखिए वो दौर भी था और ये दौर भी है। रेडियो वहां भी था, रेडियो यहां भी है, गीत वहां भी थे और गीत यहां भी है, बस बदला है तो समय। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: सर।
1: कहते हैं मुस्कान की कोई भाषा नहीं होती। जिस तरीके से एक अच्छी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, वैसे ही एक अच्छा गीत यानी कि गाना किसी के मन को खुशियों से भर देता है।

दोस्तों बातों बातों में ही पूरा एक घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। यही तो संगीत का जादू है, वो समय को थाम लेता है, यादों को जगा देता है और दिलों को जोड़ देता है। आज के इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतू कुमावत आपसे अनुमति चाहती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, नई यादों और पुराने सुरीले गीतों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि और सुनते रहिए आकाशवाणी का अपना कार्यक्रम बातों बातों में।

0: लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 07442322442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी जनवाणी लाभवाणी।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे मुंबई आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब

0: आह मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा।

रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सपना

आशिकों से इस कदर बेरुखी न कीजिए।

0: मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित

रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में कड़ी संख्या 18।
1: सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम

0: डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
0: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहां पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज हैं, जो यहां की बायोडायवर्सिटी है, जो यहां की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहां पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहां पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहां की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड

0: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेज बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार यह प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आइए। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्स